0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकारों का सीधा संबंध मानवीय गरिमा से है और इनमें स्वास्थ्य सेवा, भोजन, आवास, आजीविका और स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच शामिल है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया।

0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन किसी भी कोई भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है वो हमारे पास आए। हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या है उसका हम अपनी तरफ से उसकी सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरुनानक चौक, लोधी रोड, फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि लोग प्रभावित इलाकों से अनावश्यक यात्रा करने से बचें। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। मंत्रालय ने कहा कि स्थिरता बिजली संयंत्रों की दैनिक खपत के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को दर्शाती है। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मांगरोल को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह कार्यक्रम मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में आयोजित किया गया। ये एक सुरंग रोधी जहाज था। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित मांगरोल युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और उन्नत हथियारों तथा सेंसरों के एकीकरण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के 2 दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्र का 2 दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। घरेलू शेयर बाजार आज सुबह 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 71,911 पर, जबकि निफ्टी 149 अंक गिरकर 22,372 पर पहुंच गया। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Mangrol, the third anti-submarine warfare shallow water craft built by Cochin Shipyard Limited, CSL Kochi, was commissioned into the Indian Navy at the Naval Dockyard, Mumbai, this morning. Named after Mangrol, a coastal town and prominent fishing harbour in Gujarat's Junagadh district, the ship carries forward the legacy of the erstwhile INS Mangrol M85, a minesweeper that served the Indian Navy until the 7th of April 2004. The naming of the ship continues the Navy's tradition of preserving the legacy of its former warships. Built with over 80% indigenous content, Mangrol reflects India's growing capabilities in warship design, construction and integration of advanced weapons and sensors. Constructed by CSL under the government's Make in India and Atmanirbhar Bharat initiatives, the ship marks another important step towards self-reliance in defence shipbuilding. Chief Justice of India, Justice Suryakant.

0: 사람들.
1: ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। आप सभी को शक्ति आराधना के इन पावन दिनों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हर दिन माँ का एक नया स्वरूप हमारे सामने आता है और हर स्वरूप अपने साथ जीवन का एक सुंदर संदेश भी लेकर आता है। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड और आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर आप सुन रहे हैं आपका हमारा प्यारा प्रोग्राम घर आंगन, और आज आपके साथ हूं मैं आपके रेडियो हमसफर सोनाली। आज की पहली बात उसी शक्ति की जो हमें सिखाती है धैर्य रखना, अपने संकल्प पर टिके रहना और बिना विचलित हुए अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप की माला और दूसरे में कमंडल है। उनका स्वरूप तप, साधना और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, कठिन परिस्थितियां आई, लंबी साधना करनी पड़ी, लेकिन उनका संकल्प नहीं डगमगाया। यही तप और निष्ठा उनके स्वरूप का मूल भाव है। दोस्तों, हम अगर देखें तो हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे संकल्प होते हैं जिनका परिणाम तुरंत नहीं मिलता, तो ऐसे में हमें अपनी मेहनत और अपनी काम और अपनी कोशिश को लगातार जारी रखना चाहिए, और तब शायद माँ ब्रह्मचारिणी का यही संदेश हमारे काम आता है कि हर बदलाव को समय चाहिए और हर मंजिल के लिए धैर्य। तो नवरात्रि के इस दूसरे दिन माँ से प्रार्थना करें कि हमारे मन में सही संकल्प लेने की शक्ति हो और उसे पूरा करने का धैर्य भी, क्योंकि यात्राएं तेज कदमों से नहीं, लगातार उठते छोटे छोटे कदमों से पूरी होती हैं।

फिल्म अशांति में आप सुन रहे थे चंद्रशेखर गाडगिल और साथियों की आवाज में ये गीत। दोस्तों, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि आप इन नौ दिनों में माँ की आराधना किस तरह से करते हैं, क्या उपवास करते हैं या किस तरह से माँ की पूजा और प्रार्थना में आप अपना समय बिताते हैं, हमें बताइएगा। आपके सभी तरह के जवाबों का इंतजार हमें रहेगा fmgoldga@gmail.com। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष प्रस्तुति। नवरात्र के अवसर पर हमारा यह विशेष कार्यक्रम है शक्ति आराधना माँ ब्रह्मचारिणी। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। नमस्कार, नवरात्र के अवसर पर आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शक्ति आराधना। आज हम देवी भगवती के पावन रूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जानेंगे।

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। एक देवी जो सारे प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित हैं, वह देवी दुर्गा देवी हैं, हमारी आराध्या है, हम सबकी परमात्मा स्वरूपा हमारे हृदय में निवास करने वाली है। नवरात्रि के अवसर पर उसके दूसरे दिन हम लोग देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की आराधना करते हैं, उस स्वरूप का नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यह जो नाम है, कहीं ना कहीं हमारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न करता है कि देवी के इस द्वितीय स्वरूप को हमने ब्रह्मचारिणी नाम क्यों दिया। आम परंपरा में, लोक परंपरा में ब्रह्मचारी शब्द प्रसिद्ध है, तो ब्रह्मचारी शब्द से एक भ्रांति उत्पन्न होती है कि ब्रह्मचारिणी क्यों, क्या वही स्वरूप तो नहीं है दुर्गा का? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि दुर्गा के लिए ब्रह्मचारिणी शब्द का प्रयोग किया गया है तो निस्संदेह उसके पीछे एक सुंदर धारणा है। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में संस्कृत की जो व्युत्पत्ति है, अगर समास विग्रह आदि के आधार पर इसके अर्थ को ग्रहण करना चाहें, तो वह इस प्रकार बनता है कि ब्रह्मचारयितुम शीलम यस्याह सा ब्रह्मचारिणी। अर्थात ब्रह्म में, आप यूं कहें कि उस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव है, उस परम चैतन्य जिसे हम ब्रह्म कह लेते हैं, जिसे हम परमात्मा कह लेते हैं, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, उनको प्राप्त कराना जिनका स्वभाव है, वह ब्रह्मचारिणी है। और वह ब्रह्मचारिणी देवी माता दुर्गा का द्वितीय रूप है, दूसरा स्वरूप है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, ब्रह्म की प्राप्ति क्यों? पुनः वही बात आती है, हम सारे लोग तीन दुखों में जूझ रहे होते हैं, जिन दुखों को आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख कहा जाता है। उन दुखों को पार करके हम उस परम तत्व में लीन होना चाहते हैं। हम हर प्रकार के कष्टों से, कर्मों के फल से, जन्म पुनर्जन्म के चक्र से अपने को दूर करना चाहते हैं, और इसीलिए इस माता दुर्गा की आराधना करके उस परम तत्व ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं कि सदैव हमें आनंद हो, और वह आनंद ही सच्चिदानंद है। तो इसीलिए दुर्गा के उस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। जहां तक आस्था और विश्वास का अर्थ है, हमारी आस्था, हमारा विश्वास

उस दुर्गा में ही है। नाम कुछ भी हो, रूप कुछ भी हो, लेकिन वो जो आदि शक्ति है, जो सब में निवास करने वाली है, वह दुर्गा है। और दुर्गा सारे शक्ति से युक्त होती हैं, और इसीलिए हम उनके उस ब्रह्मचारी रूप की आराधना हम दूसरे दिन करते हैं, अपने उस शांत भाव से, पुनः उसी आस्था से, उन्हीं उसी विश्वास से, उसी समर्पण से और उसी आशा अभिलाषा से, जहां पर हमें अभीष्ट की प्राप्ति होती है और अनिष्ट का परिहार होता है। यही दुर्गा सकल अमंगल को दूर करने वाली हमारी भवानी कहलाती है।

अभी आपने देवी भगवती के पावन रूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जाना। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पंकज मिश्रा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन। और जिस तरह हमने आपसे पूछा कि आप ये 9 दिनों में देवी की आराधना के लिए क्या करते हैं, तो हमारे साथ हमारे दोस्त जुड़े हैं नवीन भाटिया जी, मोतीनगर नई दिल्ली से लिखते हैं। वो तो डेली रूटीन में ही माँ की ज्योत जलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप इन दिनों कुछ अलग और कुछ विशेष नहीं करते हैं क्या, कुछ उस बारे में भी हमें बताइएगा। फिर हमारे साथ जुड़े हैं उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सोनित कुमार ख्याला से लिखते हैं, नमस्ते मैडम जी, आप सब आरजी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और घर आंगन आगे लिखते हैं कि घर आंगन प्रोग्राम गाने और साथ में जानकारी भी बहुत अच्छी लग रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों से जो जाना है और इसी के साथ हम आगे आपको दूसरे विषयों की तरफ ले चलते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी, जरा सोचिए, क्योंकि बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि किसी घर में जब नई बहू आती है ना, तो उसके सिर पर पल्लू होता है, किसी शादी में दूल्हे के सिर पर साफा बंधा है, किसी बुजुर्ग के सामने कोई महिला सहजता से सिर पर ओढ़नी रख लेती है, और कहीं सुदूर बहुत गर्म किसी प्रदेश में, किसी गर्म स्थान में जो वो कपड़ा है वो धूप में सिर को ढकने का काम करता है, तो किसी दूसरे मौके पर वही कपड़ा सजनी संवरने का हिस्सा बन जाता है। एक कपड़ा और उसके इतने सारे रूप, इतने सारे अर्थ। देखिए, भारत में पहनावा सिर्फ यह तय करने के लिए नहीं रहा कि शरीर पर क्या पहना जाए, जबकि हमारे कपड़े अक्सर यह भी बताते हैं कि हम कहाँ से आते हैं, किस अवसर पर हैं और किस उम्र या भूमिका में हैं, और हमारे आसपास का सामाजिक माहौल कैसा है। तो आपने कभी इस बारे में सोचा है? देखिए, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि पल्लू जो है ना, वो इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। साड़ी का वही हिस्सा कभी सिर ढकता है, कभी धूप से बचाता है, कभी बच्चे को संभालने में काम आता है, और कभी बस पहनावे की खूबसूरती बढ़ाता है, यानी उसका अर्थ परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। घूंघट का अर्थ भी हर जगह एक जैसा नहीं रहता, मानेंगे ना। कई समुदायों और इलाकों में यह बुजुर्गों के सामने सम्मान की परंपरा से जुड़ा रहता है, तो कहीं यह महिलाओं से जुड़ी सामाजिक अपेक्षाओं का हिस्सा बन गया। और वैसे आज समय बदल रहा है और घूंघट को लेकर हमारी सोच भी बदल रही है। और रहा बात साफे का, तो देखिए, साफा राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में यह सिर्फ सिर पर बांधे जाने वाला कपड़ा नहीं, बल्कि कई मौकों पर सम्मान, उत्सव और पहचान का हिस्सा रहा है, है ना। और रंग और बांधने का ढंग भी कई बार अवसर और जगह के अनुसार बदलता रहता है। यही ज्ञानी हमारे पारंपरिक कपड़ों को सिर्फ पुराने रीति रिवाज कहकर छोड़ देना भी अधूरा होगा, क्योंकि इनमें मौसम की सहज समझ है और स्थानीय जीवन की जरूरतें हैं, सामाजिक रिश्तों की झलक है और समय के साथ बदलती सोच भी। कपड़े बदलते हैं, उन्हें पहनने का ढंग बदलता है, उनके अर्थ भी बदलते हैं, लेकिन एक बात बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि हमारे यहाँ कपड़ा अक्सर शरीर से पहले कहानी पहनता है, है ना। और कभी अपने प्रदेश की, कभी अपनी परंपरा की, और कभी उस समय की जिसमें हम जी रहे होते हैं, मानेंगे ना।

दोस्तों, किसी के हाथ में लकड़ी हो तो उससे दरवाजा बनता है, किसी के हाथ में मिट्टी हो तो उससे घड़ा आकार लेता है, कोई लोहे को आकार देता है, कोई धागे से कपड़ा सिलता है और कोई पत्थर में छिपी आकृति को बाहर ले आता है। हमारे देश में ऐसे कितने ही हुनर हैं जो किताबों से नहीं बल्कि पीढ़ियों के अनुभव से सीखे जाते हैं। इन्हीं पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को सम्मान, प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के अवसर देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई इस केंद्रीय योजना में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। इनमें लकड़ी पर काम करने वाले कारीगर, नाव बनाने वाले और राजमिस्त्री शामिल हैं, धातु और लोहे का काम करने वाले, औजार और हथौड़े बनाने वाले, ताला बनाने वाले और आभूषण तैयार करने वाले कारीगर भी इस योजना के दायरे में आते हैं। इसी तरह मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मूर्तियां और पत्थर तराशने वाले, पत्थर काटने वाले और चमड़े से जूते और दूसरी उपयोगी वस्तुएं तैयार करने वाले कारीगर भी इसमें शामिल हैं। बांस और प्राकृतिक रेशों से टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले कारीगरों को भी योजना में जगह दी गई है। इसके अलावा ना दोस्तों, जो बाल हमारे संवारते हैं वे लोग कपड़े धोने, कपड़े सिलने, फूलों की मालाएं बनाने और मछली पकड़ने के जाल तैयार करने वाले पारंपरिक काम करने वाले जो कारीगर है ना, वो भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना का फायदा कैसे लिया जा सकता है, तो इस बारे में हम बात करेंगे ना। बस उसके पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

फिल्म आन मिलो सजना, इसमें आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। अब हम जानते हैं कि इसके लिए पात्रता क्या है। तो अगर आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है और आप इन 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक से जुड़े हैं, हाथ और औजारों से अपना काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं। योजना के नियमों के अनुसार एक परिवार से केवल एक सदस्य को लाभ दिया जाता है और सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इसके लिए पात्र नहीं हैं। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कराया जाता है। आधार, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण किया जाता है। इसके बाद जो लाभार्थी है उसके काम और पात्रता का सत्यापन किया जाता है। अपना क्या होता है कि योजना में सबसे पहले कार्यकर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाता है। कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है और बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपए का वजीफा दिया जाता है और आधुनिक औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए तक का टूल किट प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अलावा अपना काम बढ़ाने के लिए बिना जमानत ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। पहली किश्त में 1,00,000 रुपए तक और दूसरी किश्त में 2,00,000 रुपए तक का ऋण मिल सकता है। इस ऋण पर लाभार्थी के लिए ब्याज दर 5% निर्धारित है और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए भी योजना में प्रोत्साहन और विपणन सहायता का प्रावधान है। योजना की पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए और आवेदन की प्रक्रिया भी समझना चाहते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है pmvishwakarma.gov.in इस पर जाकर के आप सारे जितनी भी इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए नजदीकी CSC सेंटर से भी सहायता ली जा सकती है, क्योंकि हुनर सिर्फ हाथों की कला नहीं होता, वह पीढ़ियों से संजोई हुई पहचान होता है और जब उस हुनर को सही प्रशिक्षण, सही औजार और सही बाजार मिल जाए तो यही हुनर एक परिवार के भविष्य को भी नई दिशा दे सकता है।

मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले का आप सुन रहे थे फिल्म थी दिल देके देखो। अच्छा देखिए, हमारे साथ हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं और हमारी श्रोता। तो ये जिस तरह से हमने आपसे पूछा कि नवरात्रों में आप विशेष क्या कर रहे हैं, तो ये लिखती हैं, हमारे साथ हैं गौरी शंकर जी नांगलोई से लिखते हैं, सोनाली बेटा राम राम। बेटा व्रत तो नहीं करते हम क्योंकि शरीर इतना ठीक नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत काम ऐसे हैं, इंसान किसी के साथ गलत काम ना करे, जो हो सके अच्छा करे, यह भी एक परमात्मा की पूजा के बराबर है। वैसे आज छोटी बहन पिंकी के यहाँ जागरण है बहादुरगढ़ में, वहां जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी भी अरदास लगा दीजिएगा। और इसके अलावा हमारे साथ, अच्छा हमारे नवीन जी से पूछा था कि विशेष क्या करते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि विशेष तो ये करते हैं कि सजावट करते हैं मंदिर और घर की, और हम तो वैसे ही वेजिटेरियन हैं। अच्छा, और इसके बाद हमारे साथ हैं कि सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं घर आंगन, हमारी ओर से आपको और घर आंगन परिवार को शरद शारदीय नवरात्रि के हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आपको भी हमारे एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से, आकाशवाणी परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। फिर आप लिखते हैं कि नवरात्रि में आप अपने घर पर मैं माँ की सुबह शाम पूजा करते हैं ये सभी, और फिर नवमी पर कन्या पूजन करते हैं। बहुत बढ़िया। फिर लिखते हैं कि आपको सोमवार और आपका सोमवार और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो, कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन। अच्छा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं, हवा में ठंडक है और दूर दूर तक आबादी बहुत कम दिखाई दे रही है। ऐसे ही ऊंचे पहाड़ी इलाके में अगर मैं आपको बताऊं एक छोटा सा डाकघर है जो आज भी लोगों को दुनिया से जोड़ने का काम कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? अनोखा लगेगा ना। तो यही तो जानकारी लेकर आई हूं मैं आज आपके साथ। देखिए, ये है हिक्किम डाकघर जो ना हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 4,400 मीटर की ऊंचाई पर बसा हिक्किम लंबे समय से दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहां से भेजा गया एक छोटा सा पत्र या पोस्टकार्ड भी अपने साथ इस दुर्गम इलाके की कहानी लेकर आता है। हिक्किम गांव जो है ना वो स्पीति घाटी में स्थित है दोस्तों, और ना काजा से इसकी दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। इतनी ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी ना यहाँ डाक सेवा का बने रहना अपने आप में बहुत खास बात है। ये डाकघर जो है ना ये 5 नवंबर 1983 को शुरू हुआ था। लंबे समय तक इसकी सेवाएं पुराने भवन से चलती रही, बाद में इसे नए भवन में स्थानांतरित किया गया। आज ना यहाँ आने वाले पर्यटक जो होते हैं ना वो भी अक्सर अपने घर या दोस्तों के नाम हिक्किम से पोस्टकार्ड भेजते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहाँ इंटरनेट और मोबाइल के दौर में भी कागज पर लिखे कुछ शब्द अपने सफर पर निकलते हैं। सोचिए, आज जब संदेश भेजने में कुछ सेकंड लगते हैं तब भी कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई से एक पोस्टकार्ड भेजने के लिए डाकघर तक जाता है। शायद इसीलिए हिक्किम का डाकघर सिर्फ एक डाकघर नहीं है, वह याद दिलाता है कि दुनिया कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, किसी अपने के नाम पर हाथ से लिखा हुआ संदेश आज भी अपना एक अलग रास्ता बनाता है।

फिल्म हिना में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। अच्छा दोस्तों, अभी तो नवरात्रों का दिन है और वैसे भी मंदिरों में हम जब भी जाते हैं हम फूल जरूर चढ़ाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि इन मंदिरों में जो हम फूल चढ़ाते हैं उनका बाद में क्या होता है? पूजा पूरी होने के बाद अक्सर आपको क्या लगता है उन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? रुकिए, मैं आपको बताती हूँ ना। ऋषिकेश में ये जो फूल होते हैं ना, इन्हीं को नई जिंदगी देने की पहल शुरू हुई है। मंदिरों और धार्मिक स्थलों से निकलने वाले फूलों को इकट्ठा करके उनसे प्राकृतिक अगरबत्तियां और दूसरे उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। यानी जो फूल कल तक पूजा का हिस्सा थे आज किसी नए रूप में घरों तक पहुंच रहे हैं। इस पहल की ना एक खास बात यह है कि इससे सिर्फ फूलों का सदुपयोग ही नहीं हो रहा बल्कि स्थानीय महिलाओं को काम से जोड़ने का अवसर भी मिल रहा है ना बहुत अच्छी बात। और क्या होता है ना कि महिलाएं इन फूलों को सुखाने, पीसने और उनसे अगरबत्ती तैयार करने जैसे कामों से जुड़ रही हैं और इससे उनके हाथों में हुनर के साथ अपनी कमाई का साधन भी तो आ रहा है ना। और सोचिए, एक फूल जो कुछ घंटे पहले तक आस्था का प्रतीक था उसे यूं ही कूड़े में जाने के बजाय किसी के हाथों से नया रूप मिल जाए तो इससे बेहतर पुनः उपयोग और क्या होगा, है ना। और इससे पहले हम ये जो पहल है ना, ये हमें ये भी समझाती है कि पर्यावरण की चिंता हमेशा किसी बहुत बड़े अभियान से शुरू नहीं होती। कभी कभी बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां हम किसी बेकार समझे जाने वाली चीज में फिर से उपयोग की संभावना देख लेते हैं। फूलों की खुशबू तो कुछ देर की होती है लेकिन अगर वही फूल किसी के लिए रोजगार और किसी दूसरे के लिए साफ वातावरण का कारण बन जाए तो उनकी खुशबू कहीं दूर तक पहुंच पाती है।

फिल्म जिगरी दोस्त में आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये बहुत प्यारा सा गीत, और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपके जीवन में भी फूलों की खुशबू और ये बहार हमेशा बनी रहे, आप हमेशा यही मुस्कुराते रहें। अब मुझे यानी आपके रेडियो हमसफर सोनाली को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

kangen. आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन हैं पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था

की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था, जो लगभग एक दशक में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। दूतावास ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि वह परिवार के संपर्क में है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 506 अंक गिरकर 71,967 और निफ्टी 128 अंक लुढ़ककर 22,393 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, फिजा फिल्म का निर्माण प्रदीप गुहा ने 55 मिलियन के बजट पर किया था और 8 दिसंबर वर्ष 2000 को विश्व स्तर पर सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हुई थी। रिलीज होने पर फिजा को सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसकी कहानी और संगीत के साथ साथ कलाकारों के प्रदर्शन की भी प्रशंसा हुई। बॉक्स ऑफिस पर सफल रही इस फिल्म ने दुनिया भर में 322 मिलियन कमाए। फिजा फिल्म को 46वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 7 नामांकन मिले और करिश्मा कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। साथ ही जया बच्चन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो
1: ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, फिजा फिल्म के संगीत की अगर बात करें तो इस फिल्म के 6 गीतों को संगीत अनु मलिक ने दिया है। वहीं एक गीत पिया हाजी अली का संगीत एआर रहमान ने तैयार किया था। श्रोताओं, फिल्म के डायरेक्टर की पहली पसंद उर्मिला मातोंडकर थी, जिन्हें फिजा के किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन अंततः ये भूमिका करिश्मा कपूर को मिली। उसके बाद फिजा के भाई अमान के किरदार के लिए ऋतिक रोशन को चुना गया। इनकी भूमिका शुरू में छोटी थी, लेकिन उसी साल रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है की जबरदस्त सफलता के बाद डायरेक्टर खालिद मोहम्मद ने उनकी भूमिका को काफी बढ़ा दिया।

श्रोताओं, फिजा फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो ये कहानी 1993 के मुंबई दंगों पर आधारित है। दंगों के दौरान फिजा का भाई अमान अचानक गायब हो जाता है। 6 साल तक जब अमान का कोई पता नहीं चलता, तब फिजा खुद अपने भाई को ढूंढने निकलती है। खोजबीन के दौरान फिजा को पता चलता है कि उसका भाई अमान आतंकवादियों के गुट में शामिल हो चुका है। फिजा उसे वापस घर लाने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः परिस्थितियों और खौफनाक मोड़ के चलते फिजा को अपने ही भाई अमान को गोली मारनी पड़ती है। इसी दुखद मोड़ पर कहानी का अंत हो जाता है।

श्रोताओं, फिजा फिल्म के डायरेक्टर खालिद मोहम्मद इस फिल्म को पूरी तरह से एक सीरियस आर्ट फिल्म के रूप में बनाना चाहते थे और फिल्म का निर्देशन रामगोपाल वर्मा से करवाना चाहते थे। हालांकि सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवान के कहने पर उन्होंने खुद निर्देशन की कमान संभाली। बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स के दबाव के कारण फिल्म को कॉमर्शियल रंग देना पड़ा, जिसके चलते जॉनी लिवर का कॉमेडी सीन और सुष्मिता सेन का मशहूर आइटम सॉन्ग महबूब मेरे फिल्म में डाला गया।

इसी के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। अब मुझे यानी अपनी दोस्त को दीजिए अनुमति।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोण मियां खबरां। भारतीय समुद्री फौज ने अज मुंबई च पनडुब्बी विरोधी जहाज INS मंगरोल नूं समुद्री फौज च शामिल कीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ सालों तो रक्षा खेत्र में आत्म निर्भरता ते आधुनिकीकरण ते ध्यान केंद्रित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जदों संविधानक अधिकारां दी उलंघना हुंदी है तां अदालतां नूं दखल देना चाहिए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि एक आपस विच जुड़े संसार विच अंतरराष्ट्रीय सहयोग सिर्फ एक कूटनीतिक विकल्प नहीं सगों विश्व शांति सुरक्षा ते खुशहाली लिए एक रणनीतिक जरूरत है। लोकसभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया ब्लाक दे नेता अज मुख चोण कमिश्नर ज्ञानेश कुमार विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट विच पटीशन दायर करनगे। भारतीय समुद्री फौज ने अज मुंबई के नेवल शिपयार्ड विखे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड वालों बनाए गए अपने तीजे एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर जहाज INS मंगरोल नूं समुद्री फौज च शामिल किया। स्वदेशी तकनालोजी नाल बनाया गया यह जहाज पनडुब्बियों का पता लाने और उन्हों का मुकाबला करने की समुद्री फौज की समर्था मजबूत करेगा। पछमी जल सेना कमांड के फ्लैग अफसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने कमिश्निंग समारोह की प्रधानगी की। इस मौके ते बोलदे उन्होंने कहा कि 80% तो वध स्वदेशी समगरी नाल बने समुद्री जहाज भारत दीआं इंजीनियरिंग समर्थावां तकनीकी प्रणाली अते राष्ट्रीय संकल्प नूं दर्शाउंदा है। उन्होंने भी कहा कि 2034 तक समुद्री फौज के लगभग 60% प्लेटफार्मां की औसत उम्र 10 साल तो घट होने की उम्मीद है। INS मंगरोल नूं तटवर्ती घट पानी वाले इलाकों में पानी हेठां खतरियां का पता लाने और उन्हों का मुकाबला कर

शामिल किए जाने की उम्मीद है। इस बहरी जहाज का नाम मैंग्रोल पर रखा गया है, जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक साहिली कस्बा और माहीगीरी का एक बड़ा मरकज है। नए बहरी जहाज का डिजाइन मौजूदा बहरी सिक्योरिटी के चैलेंजों की मुनासबत से तैयार किया गया है। INS मंगरोल जदीद तर्ज के हथियारों और सेंसर से आरास्ता है। इनमें हल्के वजन के टोरपेडोज और अंदरून मुल्क तैयार किया गया आबदोशिकन रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और किसी भी आम शहरी या मुंतखब इदारे के मेंबर की किसी भी दरखास्त का खैर मकदम है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय शहरी को अदालत से रुजू करने का हक हासिल है और अदालत उनकी तशवीश की समाअत करेगी और कानून के तहत जो कुछ भी मुनासिब है राहत।

0: टोरपेडोज और अंदरून मुल्क तैयार किया गया आबदो शिकन रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और किसी भी आम शहरी या मुंतखब इदारे के मेंबर की किसी भी दरखास्त का खैर मकदम है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय शहरी को अदालत से रुजू करने का हक हासिल है और अदालत उनकी तश्वीश की समाप्त करेगी और कानून के तहत जो कुछ भी मुनासिब है राहत फराहम करेगी। नई दिल्ली में कौमी इंसानी हकूक कमीशन के 33वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आईन में हर शहरी से अजमत, वकार, बराबरी, आजादी और इंसाफ समेत वसी वादे किए गए हैं। मुलाकात के लिए INDIA ब्लॉक के मुतालबे का तस्करा करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल एक मुरासला मौसूल हुआ था जिसमें मिलने का वक्त मांगा गया था और उन्होंने कल रात इसका जवाब भेज दिया और उनसे मिलने से कासिर रहने की वजह भी बताई।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन किसी भी कोई भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है वो हमारे पास आए। हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट तक अपोजिशन के एहतजाजी मार्च के तनाजुर में दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इधर दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कहा है कि सिक्योरिटी वजूहात से नई दिल्ली में आज 6 मेट्रो स्टेशनों पर दाखिल होने और बाहर निकलने के दरवाजे शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। इनमें पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और बाराखंबा रोड स्टेशन शामिल हैं। सभी मुतल्लिका मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेन बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। इधर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी अमन कानून की सूरत हाल के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि मिंटू रोड, मंडी हाउस, गुरु नानक चौक और लोधी रोड फ्लाईओवर समेत मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के मुतासिर रहने का इम्कान है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि बाहम मुंसलिक दुनिया में बैन अक्वामी इश्तराक महज एक सिफारती मुतबादिल नहीं बल्कि ये दुनिया में अमन, सलामती और खुशहाली की एक कलीदी जरूरत है। आज नई दिल्ली में 66वें नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि आलमी इश्तराक मुश्तरक मफादात को तस्लीम करने, इनका एहतराम करने, नीज उन्हें इज्तमाही इकदाम में बदलने पर मबनी है। उन्होंने कहा कि आबो हवा की तब्दीली और दहशतगर्दी जैसे आलमी मसायल का तकाजा है कि इज्तमाही तौर पर कार्रवाई की जाए। नायब सदर ने इस बात को उजागर किया कि वसुधैव कुटुम्बकम सिर्फ भारत का नारा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में कुदरती आफत या सानहा पेश आने की सूरत में भारत मदद की पेशकश करने वाले अव्वलीन मुल्कों में आगे रहा है। नायब सदर ने कहा कि भारत दूसरों पर गलबा हासिल करने या हुक्म चलाने के लिए नहीं बल्कि इस बात को यकीनी बनाने की खातिर दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क बनने का ख्वाहिशमंद है कि कोई भी मुल्क भारत पर हुक्म न चलाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की खिदमत के तहत उनकी लगन और कुर्बानी लोगों को हमेशा तहरीक देती रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि उनके ख्यालात और नजरियात तरक्की याफ्ता भारत बनाने के अज्म को नई ताकत फराहम करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि गुज़श्ता चंद बरसों से सरकार ने असलाह से लेकर तकनीक, साजो सामान और तरबियत तक सभी शोबों में खुद किफालत हासिल करने और उन्हें जदीद तर्ज पर ढालने पर तवज्जो मरकूज की है। आज नई दिल्ली में भारतीय फौज और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दरमियान एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने के मौके पर जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब दिफाई साजो सामान का बड़ा हिस्सा मुल्की वसायल से तैयार करता है।
2: हमारे सैनिकों का वेलफेयर हमारे लिए कोई पेरिफेरल इशू नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। और जब हम अपने सैनिकों को अच्छा भोजन, अच्छा इक्विपमेंट, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी सुविधाएं देते हैं तो मैं मानता हूं हम एक तरह से उनके मनोबल को मजबूत करते हैं। और एक मजबूत मनोबल वाला सैनिक ही किसी भी चुनौती का बेधड़क सामना कर सकता है।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में वफाकी हुकूमत के जरिए इमरजेंसी नाफिज करने और जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की सरबराही वाली सूबाई हुकूमत को मुअत्तल किए जाने के बाद तशद्दुद में इजाफा हो गया है। कई इलाकों में पुलिस की जानिब से फायरिंग और गोलाबारी की खबरें हैं। कल सूबे में वफाकी हुकूमत के मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज फूट पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान इस्लामाबाद की जानिब PTI का मनसूबाबंद मार्च

में भी रखना पड़ा। खबर है कि पुलिस ने सवाबी जिले में पीटीआई के 59 कारकुनान को जबकि खैबर जिले में 6 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में यह भी कहा गया है कि साबिक वजीर आला सोहेल आफरीदी और पीटीआई के सूबाई सर जुनैद अख्तर को हिरासत में ले लिया गया है। साबिक वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि उन्हें डेरा इस्माइल खान में घर में कैद करके रखा गया है। अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ने 4.5 साल से जारी जंग में तवानाई के ठिकानों पर हमलों को रोकने से इत्तेफाक किया है, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में कोई तफसील नहीं बताई। कल रात जनाब ट्रंप की एक मुख्तसर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि जंग बंदी फौरी तौर पर रोक कर दी गई है। अलबत्ता रूस ने इस सिलसिले में कोई फौरी रायजनी नहीं की है। यूक्रेन के सर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों से गुरेज करने को तैयार है। अलबत्ता जेलेंस्की ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि वह ट्रंप के इस ऐलान के बावजूद यूक्रेन की तवानाई से मुतालिक तनसीबात पर हमले जारी रखे हुए है। भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरला और माहे में भी अगले दो दिन के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। उधर आंध्र प्रदेश में अगले दो तीन दिन तक तेज हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय बहरिया ने साहिली और कम गहरे समंदर में सिक्योरिटी खतरा से निपटने की खातिर आबदोशिकन जंगी जहाज INS मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आलमी इश्तराक मुश्तरक मफादात को तस्लीम करने, इनका एहतराम करने, नीज इन्हें इज्तिमाई इकदामात में बदलने पर मबनी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इमरजेंसी नाफिज किए जाने के बाद वहां तशद्दुद में तेजी आ गई है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि रूस और यूक्रेन ने तवानाई के ठिकानों पर हमले न करने से इत्तेफाक कर लिया है। और भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अभय हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल हैं। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

0: सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप MOU की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
3: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
4: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
5: स्मार्ट सफेदी का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहता

0: करती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से विमल अकोयजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्टार्ट अप इंडिया की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो विमल अकोयजम जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
2: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
4: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
3: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के

गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडियन ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़ FM 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेश खदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो मंजिल एक दिन खुद हमारा रास्ता पूछते हुए हमारे पास ही आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखा है, सादर नमस्कार विमलेश जी और अजीत जी। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सफल प्रसारण के लिए मैं

उमंग परिवार की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अगला संदेश हमें मिला है रामकुशल पटेल जी का छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, 15 सितंबर को हमने कार्यक्रम उमंग में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनी। पेड़ पौधों का हमारे जीवन और पर्यावरण में कितना बड़ा महत्व है, ये जानकर हमें बेहद अच्छा लगा। ऐसी उपयोगी जानकारी देने के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि उमंग कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करते रहें। आपको बता दें कि उमंग कार्यक्रम हम पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा और मनमोहक लगता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इतनी उपयोगी प्रस्तुति के लिए। श्रोताओं, अगला संदेश हमें मिला है उरई कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से वैशाली पटेल, हेमवर्षा पटेल, युवराज पटेल, देवराज पटेल, जगबाई पटेल और रमेश पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को आपने यादगार बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू जी का। लिखते हैं, बहुचर्चित उमंग कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अजीत एवं बिमलेश जी को सादर बधाई एवं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों की प्रस्तुति बेहद लाजवाब रहती है, सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियां तो हमें सुनने को मिलती हैं। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होने वाले उमंग कार्यक्रम के द्वारा हमें सच में बहुत ही लाभ होता है। आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और मन भावन लगते हैं। महोदय, मैं 1983 में कक्षा 7वीं से आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र 61 साल की है। आकाशवाणी रेडियो का मैं दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अब सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे जी का। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू जी का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है, सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है निप्पॉन, जिसका मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर है, जिसके कारण वहां से सूर्य सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सर सीवी रमन, चिकित्सा में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा, अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, और शांति का नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी। हमारा अगला प्रश्न था कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है, मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा उनके लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने किया था। आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। परमवीर चक्र पदक का डिजाइन श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम इवरॉन लिंडा था। वहां वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनसे विवाह कर भारत आ गईं। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका उत्तर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें

0: 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए ये सम्मान मिला। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता का ये एक सुंदर संगीत रूपक है जिसमें भारत भूमि की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विद्यमान एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं।
0: तो बच्चों ये बताओ, आपको कविता पसंद है ना?
2: मुझे अच्छी लगती है।
3: मुझे बहुत पसंद है।
4: मुझे भी पसंद है।
5: मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत अच्छे, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। तो बच्चों, आज हम एक कविता का पाठ करेंगे।
1: जी सर।
2: मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है।
0: ठीक है,
1: ठीक है,
5: बहुत अच्छा लगा।
0: तो बच्चों, कविता का शीर्षक है हम अनेक किंतु एक। क्या है शीर्षक?
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो अब बच्चों, मैं इसका पाठ करूंगा और आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। तो तैयार हैं आप सब?
1: जी सर, तैयार हैं।
0: तो शुरू करते हैं कविता। हैं कई प्रदेश के,
1: हैं कई प्रदेश के,
0: किंतु एक देश के,
1: किंतु एक देश के,
0: विविध रूप रंग हैं,
1: विविध रूप रंग हैं,
0: भारत के अंग हैं,
1: भारत के अंग हैं,
0: भारतीय वेश एक,
1: भारतीय वेश एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: बोलियां हजार हैं,
1: बोलियां हजार हैं,
0: टोलियां हजार हैं,
1: टोलियां हजार हैं,
0: कंठ भी अनेक हैं,
1: कंठ भी अनेक हैं,
0: राग भी अनेक हैं,
1: राग भी अनेक हैं,
0: किंतु गीत बोल एक,
1: किंतु गीत बोल एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: एक मातृभूमि है,
1: एक मातृभूमि है,
0: एक पितृभूमि है,
1: एक पितृभूमि है,
0: एक भारतीय हम,
1: एक भारतीय हम,
0: चल रहे मिला कदम,
1: चल रहे मिला कदम,
0: लक्ष्य के समक्ष एक,
1: लक्ष्य के समक्ष एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो बच्चों, कैसी लगी कविता?
1: मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छी तो लगी। तो अब बताइए, अभी हमने सुना हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के। क्या सुना हमने?
1: हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के।
0: तो अब ये बताइए कि हम किस देश में रहते हैं?
1: भारत।
0: हाँ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। तो ये तो देश हुआ, लेकिन प्रदेश क्या है?
2: हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी प्रदेश का नाम बताइए।
6: उत्तर प्रदेश में मेरी नानी रहती है। असम में मेरे दादा रहते हैं।
2: और एक और मैं बताऊँ, पंजाब।
0: आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। बच्चों, हमारे देश में कुल 28 प्रदेश या राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अब जरा बताइए, क्या इसी कविता को गीत में सुनना चाहते हैं?

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। हमें आशा है ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आया होगा, तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। इस सुंदर गीत के बाद आइए अब अंत में सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है राइफलमैन संजय कुमार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के बहादुर और पराक्रमी सैनिक संजय कुमार के शौर्य का वर्णन किया गया है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बेटा संजय, आप सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी, आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा, वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी, वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा, तो मेरे संजय बेटे को सब याद है।
1: हाँ चाचा जी, मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई, क्यों नहीं बताया था? जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी, क्या हुआ?
0: हाँ तो संजय बेटा, उन दिनों मैं सेना में नया नया भर्ती हुआ था।
1: अच्छा।
0: अचानक पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया।
1: हमारे देश पर हमला कर दिया?
0: हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए, छक्के।
2: साथियों, ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, कलोल बकैण। कलकल करती नदियाँ,

0: ऊंचे पर्वत और यहाँ की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
1: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
0: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।
1: ये बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वह एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
0: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
0: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
1: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
0: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
2: कैसे लोग ऊंचाई पर
3: साथियों, बिल्कुल ठीक। आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
2: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है।
4: वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
3: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे छुपते छुपाते रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें।
2: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक रहेगा संजय भाई, यही ठीक रहेगा संजय भाई।
3: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।
2: ठीक है,
3: फिर हमें मिशन शुरू करना है।
2: राइट, ठीक है संजय भाई, बिल्कुल ठीक।

0: तो शुरू करें?
1: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल रहा पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।

0: तापमान और विरल होती प्राणवायु,
1: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मनोबल। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।
0: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा। राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
2: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
3: बिल्कुल ठीक।
2: अपनी आंख डाल के फायर करो, फायर।
1: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गई।
4: कार्बाइन खाली हो गई है।
5: क्या होगा? अब क्या होगा? इसे ठहरो, ठहरो।
4: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
1: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
0: आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से 3 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में 3 गोलियां लगी, जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े।
2: दुर्गा माता जय।
0: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
1: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।
2: भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। घायल, अब कहां भागते हो? और रुको, ठहरो, हिम्मत है तो सामने आओ। अपने साथियों, तुमने से कोई बचकर नहीं भागेगा। मारो।
0: राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार

0: अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
1: भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको तुरंत उपचार की जरूरत है।
2: वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली।
3: आपको वहाँ ले चलते हैं। वहाँ चलते हैं। मरहम पट्टी करवा दीजिए। कम से कम खून का बहना रुक जाएगा।
2: आओ भाई जी,
4: नहीं मान सकते। नहीं मान सकते।
2: आओ तो सही।
4: चिंता मत करो, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैट टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
3: लेकिन जी, लेकिन
4: मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हूँ।
3: अरे
4: आप, तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
3: आप सुनो,
4: छुपा हुआ ना,
3: आप
4: कोई बचने ना पाए, जाओ चेक करो। चेक करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा मुझे।
3: अरे
4: जाओ।
0: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफल मैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कोह घाटी के पॉइंट फ्लैट टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
5: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दो जुलाई 2014 को उन्हें सेना में पदोन्नति देकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया।
0: देश ऐसे महावीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम राइफलमैन संजय कुमार। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुदम्मार से खबरें सुनिए। भारतीय बहरिया ने साहिली और कम गहरे समंदर में सिक्योरिटी खतरात से निपटने की खातिर आबदोश शिकन जंगी जहाज आईएनएस मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आलमी इश्तराक मुश्तरका मफादात को तस्लीम करने, इनका एहतराम करने, नीज इन्हें इज्तिमाही इकदाम में बदलने पर मबनी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इमरजेंसी नाफिज किए जाने के बाद वहां तशद्दुद में तेजी आ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने का ऐलान किया है कि रूस और यूक्रेन ने तवानाई के ठिकानों पर हमले ना करने से इत्तेफाक कर लिया है। और भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। भारतीय बहरिया ने आज मुंबई में कम गहरे समंदर के तीसरे आबदोश शिकन जंगी जहाज आईएनएस मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। इसे कोची के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएन ने तामीर किया है। मुल्क में ही तैयार किए गए इस बहरी जंगी जहाज को शामिल किया जाना साहिली और कम गहराई वाले समंदर में आबदोजों के खतरात का पता लगाने और इसकी रोकथाम के लिए भारतीय बहरिया की सलाहियत को मुस्तहकम बनाने की समत एक अहम कदम है। इसे बाजाबता तौर पर पानी में उतारने की तकरीब की सदारत बहरिया की मगरबी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वत्सायन ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए वाइस एडमिरल वत्सायन ने कहा कि इस जंगी जहाज में 80% से ज्यादा साजो सामान अंदरूनी मुल्क तैयार किया गया है। इससे भारत की इंजीनियरिंग की सलाहियत, तकनीकी पेशरफ्त और कौमी अज़्म की अक्कासी होती है। बहरिया की तौसी को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि 2026 में 10 बहरी जहाज बेड़े में शामिल किए गए हैं और मजीद 8 जंगी जहाजों को जल्द शामिल किए जाने की उम्मीद है। इस बहरी जहाज का नाम मंगरोल पर रखा गया है, जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक साहिली कस्बा और माहीगीरी का एक अहम मरकज है। नए बहरी जहाज का डिजाइन मौजूदा बहरी सिक्योरिटी के चैलेंजों की मुनासिबत से तैयार किया गया है। आईएनएस मंगरोल जदीद तर्ज के हथियारों और सेंसर से आरास्ता है। इनमें हल्के वजन के टोरपेडोज और अंदरूनी मुल्क तैयार करदा आबदोश शिकन रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि गुज़श्ता चंद बरसों से सरकार ने असलाह से लेकर तकनीक, साजो सामान और तरबियत तक सभी शोबों में खुद किफालत हासिल करने और इन्हें जदीद तर्ज पर ढालने पर तवज्जो मरकूज की है। आज नई दिल्ली में भारतीय फौज और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दरमियान एक मुफादनामे पर दस्तखत किए जाने के मौके पर जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब दिफाही साजो सामान का बड़ा हिस्सा मुल्क की वसाइल से तैयार करता है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि बाहम मुंसलिक दुनिया में बैन अक्वामी इश्तराक महज एक सिफारती मुतबादिन नहीं है, बल्कि दुनिया में अमनो सलाम

शांति और खुशहाली के कलीदी जरूरत है। आज नई दिल्ली में 66वें नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि आलमी इश्तराक मुश्तरक मफादात को तस्लीम करने, इनका एहतराम करने, नीज इन्हें इज्तमाही इकदाम में बदलने पर मबनी है। उन्होंने कहा कि आबो हवा की तब्दीली और दहशतगर्दी जैसे आलमी मसाइल का तकाजा है कि इज्तमाही तौर पर कार्रवाई की जाए। नायब सदर ने इस बात को उजागर किया कि वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ भारत का नारा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में कुदरती आफत या साना पेश आने की सूरत में भारत मदद की पेशकश करने वाले अव्वलीन मुल्कों में आगे रहा है। नायब सदर ने कहा कि भारत दूसरों पर गलबा हासिल करने या हुक्म चलाने के लिए नहीं, बल्कि इस बात को यकीनी बनाने की खातिर दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क बनने का ख्वाहिशमंद है कि कोई भी मुल्क भारत पर हुक्म ना चलाए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज करियर के दौरान तरबियती प्रोग्राम 2M में हिस्सा लेने वाले 2011 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसरान के साथ बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि कसीर कुतबी बैन अक्वामी निजाम की नौयत, पड़ोसी पहले और सप्लाई चेन को दरपेश खतरात को कम करने के बारे में बात की। उन्होंने शुरका को नेक ख्वाहिशात पेश की और कहा कि वो अहम जिम्मेदारियां निभाने जा रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में वफाकी हुकूमत के जरिए इमरजेंसी नाफिज करने और जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की सरबराही वाली सूबाई हुकूमत को मुअत्तल किए जाने के बाद तशद्दुद में तेजी आ गई है। कई इलाकों में पुलिस की जानिब से फायरिंग की खबरें हैं। कल सूबे में वफाकी हुकूमत के मुदाखलत के बाद एहतजाज फूट पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान इस्लामाबाद की जानिब PTI के मनसूबाबंद मार्च में भी रखना पड़ा। खबर है कि पुलिस ने सवाबी जिले में PTI के 59 कारकुनों को जबकि खैबर जिले में 6 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में यह भी कहा गया है कि साबिक वजीर आला सुहेल आफरीदी और PTI के सूबाई सदर जुनैद अख्तर को हिरासत में ले लिया गया है। वजीर आला अमीन खान गंडापुर ने कहा कि उन्हें डेरा इस्माइल खान में घर में कैद करके रखा गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में शाह खालिद बैन अक्वामी हवाई अड्डे को कल एक बार फिर हमले का निशाना बनाया गया। सऊदी अरब की शहरी आबादी की जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि इस हमले में जख्मी होने वाले अफराद और इमलाक को नुकसान पहुंचने का जायजा लिया जा रहा है। ये ताजा हमला हफ्ते के रोज हवाई अड्डे पर होने वाले हमले के महज एक दिन बाद हुआ है। हफ्ते के रोज का हमला गुज़श्ता तकरीबन एक दहाई के दौरान सऊदी अरब पर होने वाले मोहलिक तरीन हमलों में से एक था। इससे कबल सऊदी क्यादत वाले इतिहाद ने कहा था कि फजाई दिफाई निजाम ने शाह खालिद बैन अक्वामी हवाई अड्डे के करीब एक क्रूज मिसाइल को रोककर तबाह कर दिया था। रियाज में वाकई भारतीय सफारतखाने ने कल इत्तला दी कि हफ्ते के रोज होने वाले हमलों में जख्मी होने वाले 11 भारतीय शहरियों में से एक की मौत हो गई है। सफारतखाने ने मुतवफी के अहले खाना से ताजियत का इजहार किया और कहा कि वो उनके राबते में है ताकि हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। इसमें उनके जज्द खाकी को जल्द से जल्द भारत भेजने के लिए जरूरी ताउन भी शामिल है। वजीर ख्वाजा एस जयशंकर ने भारतीय शहरी की मौत पर गहरे दुख और अफसोस के इजहार किया और सोगवार कुंभे से ताजियत की। उन्होंने कहा कि सफारतखाना हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है और इस मुश्किल वक्त में मुतासर अफराद की मदद के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। भारतीय सफारतखाने ने बताया कि हमले के बाद से वो जख्मियों की सेहत के बारे में मुसलसल मालूम हासिल कर रहे हैं। इस सिलसिले में मकामी हुक्काम और अस्पतालों के जिम्मेदारान से राबता किया गया ताकि जख्मियों के बारे में ताजा जानकारी हासिल की जा सके। सफारतखाने के अहलकारों ने उन अस्पतालों का दौरा भी किया जहां जख्मी भारतीय शहरी जेर इलाज हैं। सफारतखाने के ताजा तरीन इत्तला के मुताबिक 3 जख्मी भारतीय शहरी इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट ICU में दाखिल हैं और उनकी हालत मुस्तहकम है। इस दौरान यमन के हौसी ग्रुप ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब के ठिकानों के खिलाफ मिजाइलों और ड्रोन्स के जरिए 4 कार्रवाइयां की हैं। ग्रुप ने इन हमलों को यमन के खिलाफ सऊदी जारहियत के जवाब में की गई कार्रवाइयां करार दिया है। अमेरिका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ने 4.5 साल से जारी जंग में तवानाई के ठिकानों पर हमलों को रोकने से इत्तेफाक किया है, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में कोई तफसीर नहीं बताई। कल रात जनाब ट्रंप की एक मुख्तसर सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा गया है कि जंग बंदी फौरी तौर पर कर दी गई है। अलबत्ता रूस ने इस सिलसिले में कोई फौरी राय जारी नहीं की है। यूक्रेन के सर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों से गुरेज करने को तैयार है। अलबत्ता ज़ेलेंस्की ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि वो ट्रंप के इस ऐलान के बावजूद यूक्रेन की तवानाई से मुताल्लिक तंसीबात पर हमले जारी रखे।

0: हुए हैं। जनूबी कोरिया की फौज ने कहा है कि शिमाली कोरिया ने आज सुबह उसके मशरकी समंदर इलाके की जानेब मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। मिसाइलों का यह तजर्बा शिमाली कोरिया की जानेब से हालिया दिनों में हथियारों की नुमाइश के सिलसिले की कड़ी है। इससे ऐसे वक्त में खित्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ है जब दोनों मुल्कों के दरमियान तवील अरसे से सफारती राबते मुनक़ता हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरला और माहे में भी अगले दो दिन के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। उधर आंध्र प्रदेश में अगले दो तीन दिन तक तेज हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय बहरिया ने साहिली और कम गहरे समंदर में सिक्योरिटी खतरात से निपटने की खातिर आबदोश शिकन जंगी जहाज आईएनएस मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आलमी इश्तराक मुश्तरका मफादात को तस्लीम करने, इनका एहतराम करने, नीज इन्हें इज्तमाही इकदाम में बदलने पर मबनी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इमरजेंसी नाफिज किए जाने के बाद वहां तशद्दुद में तेजी आ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि रूस और यूक्रेन ने तवानाई के ठिकानों पर हमले न करने से इत्तेफाक कर लिया है। और भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1170 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मैं अपनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामीन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामीन, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं वो नगमे जो हिंदुस्तानी लोकगीतों से लिए गए हैं, यानी वो नगमे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके के लोकगीतों से मंसूब हैं, जिनका इस्तेमाल हिंदी फिल्मों में किया गया और उन नगमों ने उन फिल्मों को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि हिंदुस्तानी लोक विरसा जो है बहुत अजीम है, बहुत वसी है। गैर ममालिक से आने वाले सियाह जहां हमारी तहजीब व सकाफत का मुनाजरा करते हैं, वहीं वो हमारे लोक विरसे की भी खूब खूब तारीफ करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं और खूब महजूज होते हैं। तो आज की मेरी पसंद प्रोग्राम के कुछ नगमे हम आपको लोकगीतों पर मबनी सुनवा रहे हैं।

जहाँ इन लोक गीतों में एक रस है, वहीं इन गुलकारों ने भी इन नगमों को जिस अंदाज से गाया है वो एक मिसाल है। यानी कहा जाए कि कहना ये गलत ना होगा कि इन गुलकारों ने इन नगमों को दोबारा जिंदा कर दिया।

दोस्तों, राजस्थान का हमारा इलाका जो है, जहाँ अपने रेगिस्तानों के लिए मशहूर है, जहाँ ऊँट सवारी के लिए मशहूर है, ऊँट सफारी जिसे कहते हैं, इसके लिए मशहूर है, वहीं अपने लोक रक्स और लोक गीतों के लिए भी बहुत मशहूर है। इसी का फायदा उठाते हुए फिल्म साजों ने राजस्थान के भी कुछ लोकगीत अपनी फिल्मों में लिए और उन नगमों की वजह से, उन लोकगीतों की वजह से वो फिल्में काफी मकबूल हुई।

राहुल यानी अदाकार शाहरुख खान एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी करता था। उसका एक ख्वाब था कि एक दिन अपनी उसकी एजेंसी हो, क्योंकि इस एजेंसी के मालिक सिद्धार्थ यानी अदाकार आदित्य पचौली की जी हुजूरी करते करते कभी कभी वो सोचता कि ये नौकरी ही छोड़ दूं, लेकिन हर मर्तबा मजबूर हो जाता जब अपनी मां के बारे में सोचता जो इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती थी और डॉक्टर का कहना था उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा लिया जाए और उन्हें किसी तरह की टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ मां यानी रीमा लागू का इलाज तो दूसरी तरफ आशिक मिजाज बॉस की हर बात को मानना राहुल की मजबूरी बन चुका था। उसे दिन रात एक ही फिक्र रहती किस तरह मां के ऑपरेशन के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करें। इसी उलझन में वो ऑफिस पहुंचता है जहां उसके बॉस सिद्धार्थ उसे लालच देते हैं वो अगर उसकी हर कदम पर मदद करेगा तो उसका हर ख्वाब जल्दी पूरा हो सकेगा।

और फिर एक दिन अचानक उसकी मुलाकात सीमा यानी अदाकारा जूही चावला से होती है। सीमा हॉस्टल में रहती थी और उसी की तरह अमीर बनने का ख्वाब देखा करती थी। सीमा की ख्वाहिश जानकर वो उसे सिद्धार्थ के यहां बतौर मॉडल की नौकरी दिलवा देता है। सिद्धार्थ को क्या चाहिए था, खूबसूरत लड़की का साथ। बस सीमा को देखते ही उसका वो दीवाना हो जाता है। अब तो हर वक्त उसे एक ही फिक्र रहती है कि किस तरह से सीमा को अपनी तरफ किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी शादीशुदा होने की बात भी सीमा से छुपानी थी। उसने इस काम के लिए राहुल को राजी कर लिया। राहुल की तो मजबूरी थी सिद्धार्थ की हर बात मानने की। उसने सिद्धार्थ की बीवी शीला को खूब झूठी बातें बनाकर यकीन दिला दिया था कि सिद्धार्थ सिर्फ उसका है। लेकिन कई बार उसे महसूस होता जैसे वो सीमा के साथ धोखा कर रहा है, सिद्धार्थ की फितरत छुपाकर।

सिद्धार्थ के साथ काम करते करते सीमा इसको पसंद करने लगी थी। सिद्धार्थ उसके और करीब आ पाता, इससे पहले ही उसके शादीशुदा होने का राज सीमा के सामने खुल जाता है। सच सामने आते ही सीमा उसी वक्त उसके प्यार को ठुकरा देती है, लेकिन तभी सिद्धार्थ फिर से एक बार झूठी कहानी बनाकर उसकी हमदर्दी हासिल कर लेता है। सीमा को उसकी बात पर यकीन हो जाता है तो वो दिल ही दिल में फैसला करती है सिद्धार्थ को एक मौका और दिया जाए। उधर शीला को पहले ही से शक था सिद्धार्थ की हरकतों पर, इसलिए एक दिन वो सिद्धार्थ से सीमा के घर चलने की जिद करती है। शीला की बात सुनते ही सिद्धार्थ फौरन राहुल को सीमा का हस्बैंड बनाकर शीला को उनसे मिलवा देता है। अब शीला का शक दूर हो जाता है, वो अनजाने में राहुल को सीमा का शौहर समझ लेती है।

वक्त बीतने के साथ साथ सीमा को सिद्धार्थ की हरकतों पर कुछ कुछ शक होने लगा था। उसको खुद से दूर होता देखकर सिद्धार्थ उसे मॉडलिंग करवाने के बहाने स्विट्जरलैंड ले जाता है। सीमा के चले जाने के बाद राहुल को एहसास होता है वो भी सीमा को चाहने लगा है। बस अब वो फैसला करता है किसी भी तरह सिद्धार्थ को सीमा से अलग करवाया जाए, इसलिए वो शीला को लेकर स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है। अपनी बीवी को देखकर सिद्धार्थ के होश हो जाते हैं।

की मां उन दोनों को सच में मियां बीवी समझ लेती है और वो उसी वक्त सीमा को अपने घर लाकर सारी रस्में अदा करती है। राहुल मां की बीमारी की वजह से उनसे कुछ नहीं कह पाता। यहीं से राहुल और सीमा की जिंदगी में बदलाव आना शुरू होता है। कभी कभी सीमा को महसूस होता वो राहुल की मां को धोखा दे रही है, इसलिए एक दिन राहुल से इस बात को कहती है कि राहुल उससे इल्तिजा करता है तब तक वो उसकी मदद कर दे जब तक उसकी मां का ऑपरेशन न हो जाए। राहुल की बात उसका दिल पसीज जाता है और वो उसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है, मगर ये सब सिद्धार्थ को सहन नहीं होता तो वो सीमा को बहकाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि राहुल ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा है। सिद्धार्थ की इस बात से सीमा को बहुत दुख पहुंचता है और अब वो राहुल से अलग होने का फैसला कर लेती है। वो राहुल से कुछ कह पाती इससे पहले ही राहुल की मां उसे राहुल के हर ख्वाब के बारे में बता देती है। उनकी मोहब्बत देखकर वो खामोश रह जाती है। इधर सिद्धार्थ को सीमा के लिए परेशान देखकर भूषण यानी अदाकार गुलशन ग्रोवर उसको समझाता है और उसी के कहने पर सिद्धार्थ अपने यहां एक पार्टी रखता है जिसमें सीमा को बुलाता है और धोखे से उसके सॉफ्ट ड्रिंक में नशे की दवा मिलवा देता है। सीमा उसकी चाल से बेखबर थी और वो सॉफ्ट ड्रिंक पी लेती है, मगर किस्मत से राहुल वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है।

सीमा को पाने की चाल इस मर्तबा भी सिद्धार्थ की नाकाम हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। अगले दिन राहुल को बुलाकर उसे ऑफिस की चाबी भी देकर कहता है, आज से ये सब तुम्हारा है। मगर राहुल समझ जाता है सिद्धार्थ ने ये सब इसलिए दिया है ताकि वो उसके रास्ते से हट जाए और वो अपना मुंह बंद रखे। बस फिर क्या था, उस वक्त राहुल सीमा को सारी सच्चाई बताने पहुंचता है, लेकिन वहां उसको पता चलता है कि सिद्धार्थ को सीमा को फार्म हाउस पर ले गया है। वो फार्म हाउस पहुंचकर सीमा से कुछ कह पाता इससे पहले ही सीमा को सिद्धार्थ की असलियत का पता चल जाता है और अब वो सिद्धार्थ के यहां नौकरी छोड़ देने का फैसला करके राहुल को बता देती है कि सिद्धार्थ हम दोनों के साथ धोखा कर रहा था। इस तरह वो दोनों हमेशा के लिए मिल जाते हैं। राहुल की मां को सीमा अपना लेती है। वो सीमा से कहती है, अगर मेरा बेटा बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देखकर गलत लोगों में फंस सकता है तो तुम तो एक लड़की हो, ख्वाब देखने का हक तो तुमको भी है। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है, मेरी जान बचाने के लिए मुझे खुशी दी है। और अब राहुल तय करता है वो मेहनत करके एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और आज उसे सीमा की बात याद आ जाती है जब उसने कहा था, राहुल हमेशा याद रखना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है।

कहकशां प्रोग्राम में सामिन भी आप सुन रहे थे फिल्म यस बॉस की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया था मोहतरमा इमराना शाहीन ने। पेशकश परवीन सलाम फरीदी की थी, मुआविन थे मोहम्मद हामिद, रावी शमीम कुरैशी। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश तनु वर्ड्स मनु फिल्म का नगमा, गुलकारें पूरन चंद वडाली और प्यारे लाल वडाली, मौसीकार कृष्णा।

और आइए अब सुनते हैं जानी दुश्मन फिल्म का नवाब आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: चलो घंटे बज गए, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा है दुश्मन।
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल, जाओ जाओ जाओ।
1: अच्छा जी,
2: और
1: ओ टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि भूतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है?

0: क्यों फूलवती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही वो
1: रहने दो काका, रहने दो,
2: मैं बोलता हूँ। फूलवती, काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
3: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे, फिल्म थी दुश्मन, मौसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सामने लीजिए, सुनिए किशोर कुमार और साथी को, फिल्म है हम दोनों, मौसीकार हैं आर डी बर्मन।

का एहतराम करने नीज इन्हें इज्तिमाही इकदामात में बदलने पर मबनी है। उन्होंने कहा कि आबोहवा की तब्दीलियां दहशतगर्दी जैसे आलमी मसाइल का तकाजा है कि इज्तिमाही तौर पर कार्रवाई की जाए। नायब सदर ने इस बात को उजागर किया कि वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ भारत का नारा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में कुदरती आफत या सानहा पेशानी की सूरत में भारत मदद की पेशकश करने वाले अव्वलीन मुल्कों में आगे रहा है। नायब सदर ने कहा कि भारत दूसरों पर गलबा हासिल करने या हुक्म चलाने के लिए नहीं, बल्कि इस बात को यकीनी बनाने की खातिर दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क बनने का ख्वाहिशमंद है कि कोई भी मुल्क भारत पर हुक्म न चलाए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में सिक्योरिटी की बिगड़ती

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल के दरमियान एमरजेंसी नाफिज होने के बाद सूबे के साबिक वजीर आला सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के दीगर 7 रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीक इंसाफ पार्टी साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई और इलाज का मुतालबा कर रही है। जिन रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया उनमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाती और पीटीआई के सूबाई सदर जुनेद अकबर शामिल हैं। पुलिस ने सवाबी जिले में पीटीआई के 56 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बढ़ते हुए दहशतगर्दाना हमलों और आईनी मशीनरी के मफलूज हो जाने का हवाला देते हुए कल सूबे में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। सूबे की अफसरशाही में फेरबदल किया गया है। एक मशावरती कौंसल सूबे का इंतजाम संभालने में गवर्नर की मदद करेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आला सतह की सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत करने के लिए आज पिशावर पहुंचे हैं। पीटीआई ने मिलिटेंटों के साथ राबते के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है और वफाकी हुकूमत पर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुनासिब इकदाम करने में नाकाम रहने का इल्जाम लगाया है। पार्टी के मुतालबात में इमरान खान के जाती डॉक्टरों तक रसाई, हिरासत में लिए गए हामियों और इमरान खान की बहनों की रिहाई नीज उनकी अहलिया बुशरा बीबी के लिए इलाज शामिल है। इमरान खान सन 2023 से जेल में हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शाह खालिद बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे को कल एक बार फिर हमले का निशाना बनाया गया। सऊदी अरब की शहरी हवाबाजी की जनरल अथॉरिटी GACA ने कहा है कि इस हमले में जख्मी होने वाले अफराद और इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। ये ताज़ा हमला हफ्ते के रोज हवाई अड्डे पर होने वाले हमले के महज एक दिन बाद हुआ है। हफ्ते के रोज का हमला गुज़श्ता तकरीबन एक दहाई के दौरान सऊदी अरब पे होने वाले मौलिक तरीन हमलों में से एक था। इससे कबल सऊदी क्यादत वाले इत्तेहाद ने कहा था कि फजाई दिफाई निज़ाम ने शाह खालिद बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक क्रूज मिजाइल को रोक कर तबाह कर दिया था। रियाद में वाक़े भारतीय सफारत खाने ने कल इत्तला दी कि हफ्ते के रोज होने वाले हमले में जख्मी होने वाले 11 भारतीय शहरियों में से एक की मौत हो गई। सफारत खाने ने मुतवफ़ी के अहले खाना से ताजियत का इजहार किया है और कहा है कि वो उनके राबते में है ताकि हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। इसमें उनके जस्ते खाकी को जल्द से जल्द भारत भेजने के लिए ज़रूरी ताउन भी शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय शहरी की मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और सोगवार कुनबे से ताजियत की। उन्होंने कहा कि सफारतखाना हम मुमकिन मदद फराहम कर रहा है और इस मुश्किल वक्त में मुतासर अफराद की मदद के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। भारतीय सफारतखाना ने बताया हमले के बाद से वो जख्मियों की सेहत के बारे में मुसलसल मालूम हासिल कर रहा है। इस सिलसिले में मकामी हुक्काम अस्पतालों के जिम्मेदारान से वराबता किया गया ताकि जख्मियों के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल की जा सके। सिफारत खाने के अहलकारों ने उन अस्पतालों का भी दौरा किया जहां जख्मी भारतीय शहरी जेर इलाज थे। सिफारत खाने के ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक 3 जख्मी भारतीय शहरी इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट ICU में दाखिल हैं और उनकी हालत मुस्तहकम है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन ने 4.5 साल से जारी जंग में तवानाई के ठिकानों पर हमले को रोकने से इत्तेफाक किया है, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में कोई तफसील नहीं बताई। कल रात जनाब ट्रंप की एक मुख्तसर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि जंगबंदी फौरी तौर पर कर दी गई है। अलबत्ता रूस ने इस सिलसिले में कोई फौरी रायजनी नहीं की है। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों से गुरेज करने को तैयार है। अलबत्ता जेलेंस्की ने रूस पर इल्जाम लगाया कि ट्रंप के इस ऐलान के बावजूद यूक्रेन की तवानाई से मुतालिक तनसीबात पर हमले जारी रखे हुए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई के। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरला और माहे में भी अगले 2 दिन के दौरान इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारतीय बहरिया ने साहिली और कम गहरे समुद्र में सिक्योरिटी खतरा से निपटने की खातिर आपदोशिकन जंगी जहाज INS मंगरूल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। आलमी इश्तराक मुश्तरक मफादात को तस्लीम करने और इनका एहतराम करने नीज इन्हें इज्तिमाई इकदाम में बदलने पर मबनी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के साबिक वजीर आला को एमरजेंसी नाफिज होने के बाद हिरासत में ले लिया गया है। और अमरीका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन ने 4.5 साल से जारी जंग में तवानाई के ठिकानों पर हमले रोकने से इत्तेफाक किया, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में कोई तफसील नहीं बताई। आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ।

أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها من

0: دارین تاسو پورې خبرو لنګینې جوړ پین میډیم ویو غدیو آکاش وانی کرګلین واس په پیتو غتو سو دغه نه فټ څنڅ کستا بلډ پريشري سکور لا ردلوکسي هاګور غنین نزد ډاکټر غلام حسین برتی کنه ټیسولین خان پوین ډاکټر محمد عباس
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो वाई रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
4: रेडियो स्टेशन कारगिल डिस्ट्रिक्ट लिनमा डॉक्टर गुलाम हुसैन बर्दी साहब जुक्सो डॉक्टर साहब नता दी सुपा थों जो की ब्लड प्रेशर मापो छकन पेशेंट या ब्लड प्रेशर थो से छकन पो मते जो ला मेडिकल टर्म्स का हाइपरटेंशन जे तो हाई ब्लड प्रेशर यानी की ची बुसा इन बोमा इन छिमी लाइन दक्षण जवान नसम मन मंगो चे दी ब्लड प्रेशर इज रमो यो नु खचिस मन जे नु खचिस मन मजा योग सालो पचे मजो सुन जे मजो सा जरे जरे पजु मजो सुन जरे दी ब्लड प्रेशर पो मी ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर छिमी ब्लड प्रेशर चीन फिजिशियन का नाम चार क्वेश्चन कंसल्टेंट का नाम चार क्वेश्चन डॉक्टर का नाम चार क्वेश्चन गोमन एरा दो ब्लड प्रेशर थोड़ा यानी हाइपर टेंशन डिफिनेशन पुचिन गल ब्लड प्रेशर नम थोड़ा
5: बिल्कुल ले इनवा ब्लड प्रेशर बो आता चिचिक बाय डेफिनेशन होता चना ब्लड प्रेशर ना एक्चुअली इन बो चीन ब्लड प्रेशर बो आता है हार्ट पे ले ब्लड पो पंप चो नो गले मींग आता हार्ट पे ले तो ब्लड पो पंप चो जाने ई वे एक प्रेशर जिंग आता रग ना ले प्रेशर जिंग जनरेट चो थारल से का आता प्रेशर जिंग को ने जनरेट चो नो गले फोन नो गले ते प्रेशर बो चिचिक जैसे आता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोले 120 बाय 80 नो गले गेन बोवांगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जशन ले योग पोवांगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जशन ले तो गेनमा वो 120 पो सिस्टोलिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 लो सोसन ले योगमा डायस्टोलिक बो 80 लो सोसन ले ये वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रोग ले ये प्रेशर बो तो फिर लूज सोसन होता है जना आता है सा ना आता चिक प्रेशर लूज ना आता है जिसे में हर अंग ना ले हर ऑर्गन ला ते ठग है अजु को सप्लाई बो लूसन हो
4: ले
5: ले ते संग काम अंग छा सामान हो ले सो बसंग तिजम जिक प्रेशर बो नॉर्मली लूज ना आता ऑर्गन संग ठीक लूसन हो ले त ते संग अगर ठोस ते छा ना ले ब्लड प्रेशर बो 120 ना जा 100 यो को 80 संग ठोस ते छा ना ले तेने ते वे आता जिस्म का नुकसान ले बाद आता हर ऑर्गन का प्रेशर मा को छा ना नुकसान ले बाद संग आता गए अजु शि गों चले कमिटी गों चन का जेएनसी जर्शन ज्वाइंट नेशनल कमिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन सो बसंग त्यो मा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नोगले ते वे गता लगभग चार चार साल इस थिंग नगाया ये लुपो गाइडलाइंस पो चेंज अचन कि कजु आगता मने स्टूडेंट जते पेशेंट नोगले चिकचिक ब्लड प्रेशर बो 140 नेता से 159 ले अगर छा न ले गिनमा उले सो बसंग ते वा मैं स्टेज वन जचन ले गिनमा उले अगर योगमा

मैथमेटिशियन धन मैं चाहता था मैथमेटिक्स ने वो स्टैटिस्टिशियन स्टैटिस्टिक्स यहाँ था एम एस सी या बी एस सी स्टैटिस्टिक्स बस दी ऑप्शन पे चूज पाया चा या तो मैं डिफेंस ऑफिसर धन मैं चाह जिन आता आर्मी छो छो ऑफिसर होता गाँव इमिंग नंग आता एन डी ए जरे नेशनल डिफेंस अकेडमी या सी डी एस एग्जाम रिसर्च जिन दी एग्जाम उन फेस बसें आता डिफेंस छो ऑफिसर धन मैं चाह दो मैन मंगाता दी ऑप्शन उन्हें वो सिविल सर्विस यान छा चाह जिनसु यू पी एस सी आता क्वालिफाई बसे आई एस IPS ऑफिसर धनमंग यांचा ने दो मेन मा यंग आता दी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ने हमबो देना सब्जेक्ट उनी रिसर्च साइंटिस्ट धनमंग यांचा जिन सो छन दिस द ऑप्शन रिंग आता दी सब्जेक्ट उने हमबो थो बिंदु छन दिन आते ऑप्शन चिक चिक बायोमेडिकल साइंटिस्ट दर्सन बायोमेडिकल साइंटिस्ट ए फील्ड पॉइंट गा वानु आते बायोलॉजी केमिस्ट्री या मेडिकल साइंस नती उमर गोशा जिन सो दी फील्ड पे आते साइंटिस्ट तौरिका साइंसदान तौरिका आते लस बसे रिसर्च सब बचा आती सैंपल सब एनालाइज चोचा देना न चोस लगाते मरीज सगे मिंग नंग मन सग इलाज सगे दिया तहकीक बचा जिनसुक छाने दे फील्ड पे लगाते बायोमेडिकल साइंटिस्ट दर्शा जिनसुक निधि फील्ड पे बायोमेडिकल साइंटिस्ट मिंग नंग मता एलिजिबिलिटी होचा जिनसुक ट्वेल्थ यानुक फिजिक्स केमिस्ट्री दोना बायोलॉजी दी चीज़ पे उम्र वोशा जिनसुक और कम से कम खुआ 50% एग्रीगेट टोटल मार्क्स मंगाता दिया गेंद सोम उम्र वोशा जिनसे दो मैन मायांग इंट्रेंस एग्जाम गाता संग संग नीट एग्जाम क्वालिफाई बसे दी फील्ड में छाई एंचेस दो नदी मिंग नायांग टॉप कॉलेज सुन गाता एम्स चोसुन सी एम सी चोसुन या टाटा मेमोरियल सेंटर चोसुन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी चोसुन दिस अति इंस्टीट्यूट रिक कॉलेज रिक यूनिवर्सिटी रिंग आता यो तिनसुक दुन यंग नाते दी कोर्स सुन भाग एंचेस इनसु ये नाम संग आते दी कोर्स पो बायोमेडिकल साइंटिस्ट कोर्स पो बन गतो आता जॉब अपॉर्चुनिटी का चोज यो चेंजर ना दी कोर्स पे बस रियाब नाता बायोमेडिकल साइंटिस्ट हॉस्पिटल सा दी लसपो बांगा जिनसुक या रिसर्च इंस्टीट्यूट सहानुक फार्मास्यूटिकल कंपनी संग मन चुक कंपनी संग गवर्नमेंट एजेंसी सहानुक दून गाँव में नुंगाता बायोमेडिकल साइंटिस्ट की पोस्ट नुचा जिनसुक छाना दी लसखुंग पे आता लसबा यंचस यंग इस रेसिंग आते ला कमर्शियल पायलट जैसा एक करियर ऑप्शन चिक दू मन नॉबल ऑप्शन चिंग आता इनंग छाना गा सूचिया पायलट दानुक सामने का तो खोए मिंगनांग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जमात चुंगी से उम्र गोशा जिनसुक एलिजिबिलिटी खुआ दू दुख ने देर के अपना खुआ कोर्स बचा जिन दे कोर्स में अनुक खुआ चीफ सबचा जिन पायलट लाइसेंस खुआ दाचा जिन न्यम्बो न्यम्बो दे अनुक लाइसेंस पुनेम्बो खुआ जहाज टूल बल सबचा कॉरपोरेशन सकनाम्बो लोक्सो ऑर्गेनाइजेशन सनाम्बो पसेंजर सकनाम्बो कार्गो शिप जहाज सकनाम्बो गा चोला लास्ट बचा जिन दून गाँव में ट्रेनिंग पकुआ थोपचा जिन से छाना दिया नु छे मिंग नंग इंट्रेंस एग्जाम आते सन लजर संग ऑल इंडिया इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स दिन छिक दी एग्जाम छे छे जिन सुख दी एग्जाम पंग आते फेस बचा या ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस ता सेना देर गब नंग आता दी ऑप्शन पो जे ई गब ना थोपचा जिन सुख दी मिंग नंग आता टॉप कॉलेज नु अगर कतो आते तना गार नंग आते दी पायलट कोर्स पो बोग जर न कतो दी मिंग नंग आता अति हिंदुस्तान अनुक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकेडमी दुख नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दुख या दो मेन माँ गुजरात फ्लाइंग क्लब दुख दून गेलर गेला आता इंस्टीट्यूट रिंग सु गाने ना आता दी कोर्स पर भाग चा जिन यदि कोर्स पर बस रिग ना आता गजुक जॉब अपॉर्चुनिटी रिक लस्कर रिक थपचा जिन दरना सब संग सबसे स्नाना कमर्शियल पायलट खोल दान मांग चा जिन जहाज टुल भी लोक्सो लोक्सो एयरलाइन सुने अनुक या कॉरपोरेशन संग ऑर्गेनाइजेशन संग दुनिया अनुक पायलट इलाज पुखा थपचा जिन दो मेन माँ मिलिट्री एविएशन एविएशन यंग छाना का तो हेलीकॉप्टर एविएशन यंग छाना का तो दी ऑप्शन हो नंग डिफेंस ऑफिसर ही दी जॉब पे मीनंग आते सन लजर संग डिफेंस ऑफिसर यंग नोबल नाती प्रोफेशन चिगी नंग आर्मी ऑफिसर धन में मीनंग ध्यान आती इंडियन आर्मी नेवी या एयरफोर्स सुमको योचा जिन दूनी ऑफिसर ही मीनंग आता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देना योचा जिन ट्वेल्थ यंग आता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स उम्र गोशिन कम से कम 50% मार्क्स ने हम बखो पास हूँ सुमर गोज और देर के अपना सन लगाते जर संग नेशनल डिफेंस अकेडमी एन डी ए एग्जाम छह चजिन या सी डी एस कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज एजेंसी एग्जाम छह चजिन दी एग्जाम उन फेस बसे दी इंट्रेंस अगर कतो क्वालिफाई छने कतो खो दी कोर्स उन बागें चजिन एन डी ए दी कोर्स उन बे मिंग नंग दी टॉप अकेडमी लतने कतो नेशनल डिफेंस अकेडमी होतंग इंडियन मिलिट्री अकेडमी होत या इंडियन नेवल अकेडमी होत दुनिया नंग आता ट्रेनिंग बागें चा दी जॉब दी कोर्स उन बा देर के अपना आता लस्का गजुग रे थोपचा जिन जरना डिफेंस ऑफिसर ही आता रोल अदा बागे अंचा जिन लोक्सो लोक्सो कम्बैट ऑपरेशन उन्हें अनुक एडमिनिस्ट्रेशन खुनी अनुक लॉजिस्टिक्स अनुक दो मेन मायंग
লোকসো লোকসো

0: Government organization sanok ngatis ngati career chuang yan chazin law enforcement agency sanok security service sanok dun gam yanok ngatis NDA qualify basi di course basi na
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कल होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित होने वाले इस फोरम के कारण कल सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमरीका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही ये

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सर 5000 रुपए लगाइए और 8000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हे गर्ल्स, आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें।
4: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
5: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
6: हमेशा पूछो WHY। वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
8: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
7: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: डैडी डैडी गाड़ी रुक गई, चलाओ ना।
2: बेटा चाबी भर दूंगा फिर चलने लगेगी, ये देखो।
1: डैडी देखो फिर रुक गई, क्या हर बार चाबी भरनी होगी?
2: हाँ बेटा हर बार।
3: इसलिए LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा।
4: LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।
5: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट। वाओ,
6: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
7: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
6: आपका साइबर रक्षक।
8: अस्सलाम वालेकुम, सैयद प्रोग्राम नाबखन कुनी खिदमत ला गचायो से गचिजना सलाम पु फ्रुतमोचन सोशे दिदी सैयद प्रोग्राम पिया सखवसनन ला यंता सखपिक PM 15.6 को लास पेरारिक जरेत देर की अपना ट्रिसेक फ्रुचुए डॉक्टर गुलाम हुसैन भर्ती करना कसनी प्रोग्राम स्नाबखनून गता सार तख्स पयोत गतिर गेस्टेट भारत ला स्कीम जरे या यक चिक जरे मंगमे चुआत मीमांसी फनखे मिंगना या ध्यान न चुक्सला गता आदरे PM 15.0 स्कीम चिक चुसो तंग गाव नु फेसेसा गता अकलियती तबका नि मिंगना लेगिना फनखे योत पोत पी स्कीम कतोर चुसे होते इन सो या दी स्कीम पुरचे गुजुक पोलो सनास तो निस्ना त्रुग्या छखन इंसु दूर चेतन पो अकलियती मीमा सुनला शेष जरे रोजगार जरे यंग नंखा जरे नंखाई नक्सबरदून फलते बे मिंगना या शेष स्टोलियां दुन लखेर भी मिंगना एमी छोन न चोक्स बसे दुन लखेर भी मिंगना दी स्कीम पो चोखन इंसु यंग अता चोगा नकाती प्रोग्राम चोसे होते इंसुक ध्यान ना पोज भी बसे खोस चोसे होते इंसुक ना चिकचिपु अते जेर ना कतो शेसी यर्गे सिमिंग ना इंसुक यंग चिकपु अता रोजगारी मिंग ना जेर ना यंग अति हेल्थ अति सेहत मिंग ना इन्ना दोन साल फिला ध्यानुक डेमो बसे चोसे होते इंसुक निंग अते स्टाना कतो दरे अति शेसी फिला खोस ICDS जेरे गाव यंग अति फ्रूनी शेष पोना अमानी सिहातुन या खोपनी रिमोट खनी अमानी सिहातुन या फ्रवस भी सुनी जानिकांग खोंस जानुक जोरतां से योते इंसो यं स्कूली शेष फिला अकलियती तबका निमिंग नांगता सर्व शिक्षा अभियान जरे दोना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जरे चुसे योते इंसो गाउन नांगता अकलियती मीमा सुनी फिला लेगिना फनखे योतांग यहां ध्यान चोखा उर्दू जरखन मलसा खिमियानुंगता उर्दू कसपरा तंग खनियोतंग दे जगह न्यांगनुंग तहां उर्दू उस्ताद तंग से शेसी वहां दुनला खेत भी फ्रलुक्स बेन योते इंसो यहां ध्यान चोगा होशियार फ्रून लगा फ्रून गता लेकिन होशियार होता खोई फिला गता प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक जेरे वजीफा तंग चावना इंसो यहां देर की अपना जेरना का तो गता रोजगारी फराहमी तंग चावा योते इंसो गाव यंग नु गता DNRLM जेरे चोक सिकी मुनिकना फनखे लेन मान चिंसो यंग ITI चुसी योते इंसो गाव निका गता गति फ्रबस भी सुन ला यहां तंग अकलियती तबका ला लोकसो लोकसो खुआ शेल सब

0: Chat mean me mon pot tonches tonches sama te and communicable disease infection is just there. So masan daksa with the passage of time ta daksa chuk erik time jik lepte tuke ngata non communicable disease kana ngata I diabetes on ole blood pressure just on ole cardiovascular disease te sama kafi badh gaya le aur communicable disease kafi gad gaya le. So masan daksa majority of the patients ka unla hospital admission chato ya problems chato le complication chakan sama even mortality deaths only mancha e non communicable in a diabetes hypertension or cardiovascular diseases as the charukle
1: bakshi doctor sab chana doctor sab mata chi bisar tas bas chas in ki diabetes mata so sen to hala zere ga chuk sign symptoms ga to chas in doctor sab
0: ji le you are important chin le chas na patient ul agar kaun la diabetes so to kaun la sugar level ba ma pek chan le 126 sam ma so to dia 200 sam ma po chan le to te patient ul la chu ma pas kom chas le thirst is ko bolte le ata to chew mong pus kumshes pishab bar bar chaches le frequency of urination dashan mangale to agar bar bar pishab chadna le ya kon la chan la lang se le chus kom sadna chan la lang se bar bar pishab chadna ya easy fatigability matlab ta kamzori yong male thakawat mang pe yong male so e symptoms sun main symptoms po in oriale diabetes na so basan kami un la chuk taklif chi chadna le temi un immediately azuka hospital la skote tene te zaruri blood sugar per check chus pa ma zaruri no ki sugar level pa samshi duk jate yale ya mane ka patient une family history yo dole yale family history like mummy papa bhai behan uncle azukun lakun la sugar yutna tene tem azuk pe azukun la family members unla ma important no ki wo har saal le yearly blood sugar zaruri check karayale ek to unko yearly karna hai ya agar kun la symptoms jona le chuma pe symptoms na chuma na le urine ma pe chana le tene zarur sugar check chu chu ma zaruri no le
1: ka sir doctor sab chana ni doctor sab di gachu gachu risk factor jigyo di diabetes na di
0: ina mang cha yu no ki ngata umur bo agar jab 45 sangil na chana le te jane zaruri ino le ngata at least sugar bo nazar bo chasi ale dusra ino risk factor family history na le tenazo daksa malap ngatang yen menun la ngata close relatives first degree relatives ngata azukun la sugar utna ya mummy papa un la sugar utna le tene mane one of the risk factor in ogle sugar be mandatory in ogle yearly check to chasle tenazo ngata dangsa lifestyle in ogle jazana ngata mang chami un sedentary lifestyle kanu last much or duk ches exercise mane much or duk na le or mota pa chana le to mota pa ek bada ek risk factor le dang dire yale song basang te wang ek risk factor gura dile ten der ngata dang din ngata different khan pin le ngata pata no le khana pina ngata kasuk shi odia le som bazang bazala da sa ngata thun khas kar le jawan un younger generation un le mang sa ngata junk foods nang te fast foods te sama packet foods ne ndu kya le te chemicals dang din exposure ngata ma ma puk duk che zan ngata bazar un la ngata gyus no le cham shi ngata te azuk sama chemical sama da sa te azuk packet food sama na yong du kya le te sama chemical un ngata बॉडी नंग को अच्छा ना हो सकता है केमिकल खाच के बीटा सेल्स अच्छे मांगा पेनक्रियास बॉडी नंग को तेनाली बीटा सेल्स आने इंसुलिन एक्चुअली एक फैक्ट्री के नौले इंसुलिन इंसुलिन शुगर पर कंट्रोल छोले अगर ये बीटा सेल्स लेवल बोर डिस्ट्रॉय होते कम छाना या ठीक चो से लस मचो ना तेने शुगर छाचे से चांसेस लूसन हो गए सो बस तीसरा इम्पोर्टेंट नौले पॉल्यूशन आले दाउंदर अभी एक स्टडी आया था जहां पे पॉल्यूशन आता एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज ले अपार्ट फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज लंग डिजीज कैंसर ते छांग छानो गए पॉल्यूशन निकले मगर ये डायबिटीज आंग वन ऑफ द फैक्टर छो गए रिस्क फैक्टर पॉल्यूशन आले सो मजाक पोता ये पॉल्यूशन मंग कम चुचेस पोता फे संग में फे मा जरूरी दुगे गाड़ी मंग यूज में चुचेस तेने ट्रैफिक मंग अगर जैम छानांगले तेनांग गाड़ी नांग समशिक तुत्प अभियान हो गए सोम बसते ट्रैफिक जैम ना स्मूथली गाड़ियों ने मूवमेंट फॉर फ्लो उन स्मूथली छचेस पाँव मा जरूरी नोगले अगर ट्रैफिक जैम गाड़ी जी मंग पिक रुके चुस्ते बोलना तेना गाड़ी नांग तुत्प मंग अभियान हो गए ते वन होते गाड़ी मंग पोंगता मैं उन्हें यूज छो रुकले तेने साइकिल मैंने यूज छो हमें रुकले घंतु पोंगता मैं उन्हें साइकिल यूज छो चेस मा जरूरी दुकले टू खासकर स्कूल चकन साइकिल यूज छोंगे ना ले ऑफिस उन्हें चकन अगर साइकिल वाइकल मारे यूज छो ना ले अजुक लाइफ अजुक इंट्रोड्यूस छो ना फेल दमू छचे दुख ताकि पॉल्यूशन कम हो वेरियस डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल कम छचेस दुख एक्सरसाइज छचे मना ले सो ती समाता एक रिस्क फैक्टर्स

0: डिजीज हम लोग इंशाल्लाह प्रिवेंट ना सिर्फ डायबिटीज ले ब्लड प्रेशर ले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यो नुकले स्ट्रोक यो नुकले तेना जो आता फैटी लिवर नुकले ते संग आता तम कम छानो गले सम बस एक अच्छा चिंग आता स्ट्रेस तो चस जरूरी तुगले
1: बख्शी सर इंडिया ने चोलानी गतु गतु खर्जिन गते सान दोन मर्गो चिन गास बस की आता लोग सो लोग सो ना तो निशित ना आता सो
0: मैं बिल्कुल ले इना सिर्फ दसा ये मतलब काप्स सिर्फ काप्स की बात नहीं होता लंगाई मांग से ग्लाइसेमिक इंडेक्स काप्स रिलेटेड जशन भयाले मगर इन फैट्स बोले इम्यून पता नील मार मलाई तेल स्पाक्सन मैंने तेल मांग पता गया मैंने बिल्कुल स्पाक्सन मैंने छिक छिक तेल मैंने थो मेरू गया सोम चुक तेल तंगा फेमस नुकसान दे नुकले हाले तेना जो मार है नुकले मार मांगपो मीन इंचले तेने मलाई मांगपो मीन इंचले बाजार नाते तड़का हुआ नुकले तेल समा तली हुई चीज समझिंग दुगले तेना जो चिप्स दूर समझिंग दुगे चिप्स मत डेंजरस नुक छिक ऑलरेडी तली हुई है दूसरा उसमें केमिकल्स को यूज चुनौले का शेल्फ लाइफ मंगपो छे फे सो बस हम डेंजरस नुकले न सिर्फ तेने ट्रांस फैट जन चले पैकेट का जिक्स डिस्तले ट्रांस फैट लेवल बो तो ट्रांस फैट पो मत एक्सट्रीमली डेंजरस नुकले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है फे सो मतु पे जंक फूड फास्ट फूड पैकेट फूड्स बेवरेजेस मांगसा कोल्ड ड्रिंक्स दुगले डिफरेंट डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स दसा खरा दंगले खरा जमाता खरा हो खरा छिल कम चुना इम्पोर्टेंट नोकले इवन शुगर लक्सा जो इट्स इक्विवेलेंट टू सिगरेट जशन मतलब इवन सिगरेट ना दंडा चौक सिगरेट नुकसान जो खरे नुकसान तेना जो मेदा ले मेदा चमसे कम चुना तो इम्पोर्टेंट नोकले उन्हें कम चुचले चेजाना ब्लड प्रेशर बोमा नोकले सिर्फ ब्लड प्रेशर कैंसर खतरा नोकले अगर कार्सिनोजन तो इम्पोर्टेंट नोकले तीसरा आता ये स्लीप बोले नीत लोग चेस बोले चेजाना आमतौर दक्षा आता मंग छा ठू गुस नोकले चमसिक छानसरी लांग दुख दुख गया सोमवास अगर प्रॉपर स्लीप मेद नांगले चेजाना आता स्लीप प्रॉपर मचान आता बॉडी अंडर स्ट्रेस आ जाता है स्ट्रेस है बॉडी ना स्ट्रेस हार्मोन बिहार नोले का शुगर शुगर छाचे से चांसेस मारे ग्लूसन ना सो पसंगुप टाइम मेक स्लीप लोकचले दस बजे यूजुअली अगर स्लीप करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट इन गले सो पसंग अर्ली स्लीप चो चीज गैजेट पो मांग छा मोबाइल नंग टीवी नंग मीर लैपटॉप घंटा चिक गल्ला नीत लोग घंटा चिक गल्ला बन चो चले तो मैं जरूरी नोले सो पसंग तेने प्रॉपर डाइट प्रॉपर एक्सरसाइज है नो ते समाचो संगता तेने जितना हम हैप्पीली अपना लाइफ गुजारेंगे उतना ज्यादा बेटर है ताकि हम डिजीज बर्डन को हम कम कर सके और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज जैसे कॉम्प्लिकेशन छाते वजह से फाइनेंशियल लॉस हम वहां पर छाते जैसे डिजीज छाना तेने ते इलाज का पूरा बुच्चे से नोगले सोमपसंग समाता नजर पोचे एक्सट्रीमली जरूरी नोगले
1: बख्शीश खुचन खर्ची उनका उनकी गति खत्ते लद्दाख गति सैयद खुरी का नबीन खाने खर्ची उन खजा सुन दोन इंची दोना रंग कीमती वक्त वक्त से एक्सरसाइज बेन जुग न इनशाला खो सक ननमित सनमित सेहत सलामत नैम्बो मिसिस खाचा शोक तुस फिंग से आकाशवाणी कर खिले स्टूडियो एरोस के चस्पुला उजू छेरू मुजरेत उजू छेरू
0: शुक्रिया
2: दरी सकपेगा बुद्री सगेत प्रोग्राम पो थमाथोन देवोस यजू खुदा
3: दरिंदेस प्रोग्राम पिन सगेत पौनिफिया प्रोग्राम अचर तंगन पुनमिन गुलजार हुसैन न प्रोग्राम फुजुक हन पुनमिन सकीना बानो मीडियम वेव गदि आकाशवाणी करगिलिन वस्पत सने तुस सुन तुस सदरदुन सोंचु कसता प्रोग्राम गिन नजत या स्पार्स नोनिफिया प्रोग्राम अचर तंगन पुन गुलजार हुसैन न प्रोग्राम फुजुक हन पुन मोहम्मद शरीफ
4: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं अभी रिडीम करें
5: अरे वाह मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए
6: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए एक Why आपको फ्रॉड से बचाए
4: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI
6: आपका साइबर रक्षक
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट

0: कुछ करना है जनाब, गेम चिचिक थाम से दुख जा, या वॉलीबॉल थाम से दुखना, फुटबॉल थाम से दुखना का तो गेम चिचिक थाम से दुख जाए दोनों यहां से पहला चिचिक अगर गा फ्री या मतलब गा प्लेयर चिक हाइट कम रही होना का तो हाई टुक टुक रही दोन लाजाशी कॉम्बैक गेम गला इन पर दोन उनके लिए जो बेस्ट गेम रहता है कॉम्बैक गेम जैसे टेकांडो जरे जूडो रेसलिंग उधर तक टाइबी गेम उन गो टुक टुक उन ला ठीक इन पर बाकी हाइट जिसका जो आज तक पास हाइट गला योद दोन ला वॉलीबॉल योद बास्केटबॉल योद उस गेम उन उधर तक प्लेयर उन ला ठीक इन सर
1: बिल्कुल छाना दिया को आमतौर से आउटडोर गेम पो चाहे इंडोर गेम इन आउटडोर गेम इन निस्कस नती अर्गुआ फनके निस्कस नर्गो एक्सरसाइज छाना को फनके छाचा गति दक्षण दिया यहाँ पर गति यो जर छाना का तो जो दक्षण ड्रग्स स्कोर लांस हाथ से पेरिक निस्का तेस का तो जरने का तो आम तौर से गाता दासन थों लोग गति ड्रग्स स्कोर पे लोग गति सुकूली फ्रू आम तौर से दी शिकार से नोटिंग सुक गान क्लास गप्पे गप्पे का ना क्लास चुनी सक पे फ्रू दिया नो कुछ दी ड्रग्स शिकार से नोटिंग चाना दे स्कोर लांग गति तमान ला हागो तो फिला गाते जरा स्नल ला मोस्की फ्रू नी स्नावा जाप्पा मना खाचन की फ्रू गार छेन दो सुनम बो दोगुन दो गार दोगुन दो तचा सु मना खाचन छाना दी फ्रून थारी जापे फिलांग यार इस चीज समेत की गति दी ऐसी फ्रून है ना जो गेम ही टूर्नामेंट चिक या छो फुसा गति आमतौर से टूर्नामेंट डूलें लो सेट सुकूल छाना सुकूलिंग लेवल का या गति गवर्नमेंट तरफ ना टूर्नामेंट रिक डूलें का तो दुख ना का तो सिर्फ सुकूली फ्रून सा मेन मा मसल खानी फुसा गति यो चिंजु तांचिक खासन छोरे देरस यारी समझो चीज है दुनिया फिला
0: यस सही मौजू ड्रग जरना का तो दक्षम माने दी नमज़ा नुकसान बसे बुरा चीशिक बिंग से दुख युद्ध सगानुक माना चीज स्थाना का तो सुकुल फ्रोसाक माना जैसे कि फिफ्थ से लेकर टेन क्लास तक उन दे शिकार छिंदुक दे फिलहाल आता सक बस से दिया दुख की फ्रून सक बस से जितना हो सके आते बिजी जा चा जितना हो सके या पढ़ाई बिजी जो या मैंने स्पोर्ट्स में बिजी रखो या मैंने कोई दूसरा एक्टिविटी ता चाहिए पेंटिंग चिता चाह आते डिबेट कम्पिटिशन ची जा दो आते जा मतलब सीधा खो पढ़ाई का सा जा दो आगे मैं हफ्ते में दो एक दिन गेम्स रखना या हफ्ते आते टाइम टाइम ची फिंग संग आते दे सब चिता दे ड्रग्स की वजह से काफी फर्क छिन दक्षम फ्रू नहीं का तो दक्षम न खोए ड्रग्स की शिकार सो सोना तो खोए ब्रेन जो डेवलपमेंट छिन दो माना कम्प्लीट छा में ठीक तरीके से उनका ब्रेन डेवलपमेंट में अच्छा ना का तो दो यंग सीरियस प्रॉब्लम दे फिलहाल जितना हो सके आते अति गवर्नमेंट इंसान थे सुखदार रोशन की हफ्ते में महीने में एक बार सुकुल सुकुल साइकसों से केम सोचा ऑर्गेनाइजेशन सोचा कि हाँ भाई ये बच्चे का गलत काम तो नहीं कर रहा है चा पुलिस ने सा काफी देर कोऑपरेट बस दिया ऑर्गेनाइजेशन ने बोलता चा कि हाँ कि साम चिक ड्रग्स एडिक्शन शो सा सों से दुख चाम ची माचा दुख और टोटल लिश ही चोचा कि हाँ चाम ची परसेंटेज के बिंग से दुख कितना कम हुआ है इस महीने में अगले महीने से कितना ज्यादा हुआ है और दोनों गाते हर महीने का डिटेल डिटेल चिफिंग से पता नजर जगना का तो ते गाता ड्रग्स इफेक्ट उन शो सा चाम ची सों से पता चल जाता
1: है बिल्कुल छान में सब गाती सबसे ज्यादा अतामानी रंग फ्रू निकर रंग नजर जख पामा खचन चा गतेस दक्षन गचुक लश लस खेक बेनो न गतो दियाना नि फिला गतेस बेनो नति द फ्रू नि जिक गतो जिक न गतो गते साम से कर पर बेनो दे चंग फन खेक गता मिलुशा छाना वक्स सिक टाइम यो तें जिंग गतेस तो निक संबा ता से स्ना गतो बन गतो गतन कामयाब छचा छाना वक्स पो सुंग ता आजादत मामिक ता मिंदुक छाना छंगसे क यरस गति खासकर यरंग यूथ गति नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर आरंग इन बाकी क्रिकेट गेम बाकी गेम गामा हैंडबॉल जरे गेम गामा नुतिन छाना छांगसुए का गति यरी हम उमर गति फ्रूनला या सिलखान फ्रू या मसिल खान फ्रू खासकर सिलखान फ्रूनला जलते मोलचा ताकि खुंग दी सुपो ची सुन रंग थारी जगसे सबक पने अम्बो हिंसपारी रंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग बुक
0: पार्टिसिपेट बोझ कम्पिटिशन बना का तो फ्रो अलग से अलग कॉन्फिडेंस ही छचिन की हाँ पूरा फैमिली सपोर्ट ना का तो वो कुछ आगे कर सकते है स्पोर्ट्स
1: नक्सन सपे गेंते प्रोग्राम पुथामाथुन नदमेदलुस्ना योमी चंद्रा ले जायंता नंबर तुक तुक दे सपे इजाजत।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बगैर नंबर चाचे, अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कार्ड पर।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं
2: करता।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
6: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
5: बगैर नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
6: तो फिर सही नंबर,
5: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कार्ड पर।
6: आपने तो बचा लिया दीदी।
5: काम से नहीं।
6: करता हूँ।
3: आरबीआई कहता है,
7: सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।
8: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हालिया दिनों मुस्तकबिल पर मबनी तालीमी निज़ाम की तामीर पर जोर देना इस हकीकत की अकासी करता है कि तालीम का मकसद महज इम्तहानात में कामयाबी, अच्छे नंबर हासिल करना या असनाद का हुसूल नहीं, बल्कि ऐसे बाशऊर, बासलाहियत और जिम्मेदार शहरी तैयार करना है जो बदलते हुए हालात का मुकाबला करने, नए मौके से फायदा उठाने और समाज की तरक्की में मुअस्सर किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हूँ। नई दिल्ली में एक

जय हिंद। फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए लेकर हम हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम सुनने वाले तमाम फौजी भाइयों और दोस्तों की खिदमत में हमारा मोहब्बत भरा सलाम। तो लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में समाप्त कीजिए यह गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कब तक लंबी कतारों में उम्र गुजारिएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, ये देखिए चुटकी में पेमेंट कीजिए। बटवा ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कहीं भी कभी भी और महफूज भी। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने आगे कहता है कि
2: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
3: औरों को भी सिखाओ।
4: डैडी डैडी गाड़ी रुक गई, चलाओ ना।
5: बेटा चाबी भर दूंगा फिर चलने लगेगी, ये देखो।
4: डैडी देखो फिर रुक गई, क्या हर बार चाबी भरनी होगी?
5: हाँ बेटा हर बार।
6: इसलिए LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा।
7: LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।
8: वक्फे के बाद दोबारा प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है।

तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों, जहर भी इसमें वो अगर होगा, जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा। सब इसी के है हवा खुशबू जमीन व आसमान, सब उसी के है हवा खुशबू जमीन व आसमान। मैं जहां भी जाऊंगा उसको पता हो जाएगा, मैं जहां भी जाऊंगा उसको पता हो जाऊंगा।

सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं। देखा तुझे चाहा तुझे सोचा तुझे पूजा तुझे, मेरी वफा मेरी खता तेरी खता कुछ भी नहीं। जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, बेजा वही कागज उसे हमने लिखा कुछ भी नहीं। एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से की बात बहुत मुझसे कहा कुछ भी नहीं। दो चार दिन की बात है दिल खाक में मिल जाएगा, दो चार दिन की बात है दिल खाक में मिल जाएगा। आग पे जब कागज रखा बाकी बचा कुछ भी नहीं, आग पे जब कागज रखा बाकी बचा कुछ भी नहीं।

0: दोस्तों प्रोग्राम के आखिर में आप समाप्त कर रहे हैं शकील आजमी का गीत रेखा भारद्वाज और जगजीत सिंह की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है तुम मिलती और संस्कार है अंकित
1: छड़ो के वो मुझ में।

0: आज इस उद्देश्य के लिए हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया था मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेश भट्ट जी को। राजेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने श्रोताओं से बात की।
1: समय अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे, फौजी भाई के लिए मेरी मैं प्रिय आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है। बहुत खबरों का हुआ चाहता है, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे।
0: नमस्कार,
1: रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार।

0: निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर

0: स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था को और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
2: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं, सच चाहिए, आरोप नहीं, प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि एफडीआई नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
3: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
4: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
3: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
5: वी आर नाउ ट्राइंग टू फोकस ऑन ग्लोबल वैल्यू चेन।
6: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है। और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
3: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति

0: स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमरीका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अब नहीं होंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साईराम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India reaffirms commitment to deepening economic cooperation with UK, targets doubling bilateral trade by 2030. Centre urges states and union territories to ensure prominent display of rate list by clinical establishments. Government to set up high-level committee to address sugarcane farmers' grievances in Maharashtra and Karnataka. Jantar Mantar in New Delhi no longer a protest site. Delhi police designates 3 new venues. American economists Robert E. Hall and Michael Woodford to get this year's Nobel Prize in Economics. An IMD forecasts a thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Punjab and Chhattisgarh till tomorrow. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO business plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi today. The minister reaffirmed the country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
2: which can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments.

0: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सब के लिए खुले हैं।
1: द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ओपन टू एवरीवन। एनी पर्सन वेदर एन ऑर्डिनरी सिटीजन और अ मेंबर ऑफ एन इलेक्टेड बॉडी हैज द राइट टू अप्रोच अस। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज दिस राइट। वी विल हियर द ग्रीवियंसेस एंड एड्रेस देयर कंसर्न्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द लीगल फ्रेमवर्क। आई रिसीव्ड द लेटर यस्टरडे एंड रिप्लाइड टू इट लास्ट नाइट एंड आई हैव साइटेड द रीजंस फॉर एक्सप्रेसिंग माय इनएबिलिटी टू मीट। आई हैव मेंटेन्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द लेटर।
2: लेटर की कंटेंट्स आपने से पूछी, मैंने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन किया।
3: द बीजेपी हैज अक्यूज्ड द कांग्रेस ऑफ अटैकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ओवर द इयर्स, alleging that the party blames these institutions for its electoral defeats. Addressing a press conference at party headquarters in New Delhi today, Union Minister and Senior BJP leader Shivraj Singh Chauhan alleged that the Congress is attempting to return to power by discrediting institutions rather than winning the support of the people. Delhi police has designated three new venues for protests and demonstrations: Ramlila Ground, Burari Ground and CBD Ground in East Delhi. In an order, Delhi Police Commissioner Anurag Kumar announced that Jantar Mantar has been denotified as a designated protest site. The Union Home Ministry had constituted a committee to identify suitable alternative venues to ensure citizens' right to organize protests and demonstrations. This is Akashwani. You're listening to News at 9.
4: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube.
3: Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the FDI policy.
5: India's foreign direct investment policy has undergone major reforms over the past decade, with the government liberalizing sectoral rules to attract greater foreign investment into the country. The government has progressively liberalized FDI norms in key sectors. Foreign investment up to 74% is permitted in defense and 100% in telecom, insurance and space sector. The country has received a record over $748 billion in FDI between 2014 and 2025. The number of source countries investing in India also rose from 89 to 112. Addressing the Rojgar Mela in New Delhi, Prime Minister Narendra Modi highlighted that today more than 100 countries are investing in India through FDI.
6: आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में FDI के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है। और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। आज भारत एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं और वैक्सीन, डिफेंस, ऑटो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में भारत के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है।
5: चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी अनंत नागेश्वरन सेड दैट इंडिया हैज ओपन्ड अप सेवरल सेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, ड्रोन्स, डिफेंस एंड इंश्योरेंस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
7: वी आर नाउ ट्राइंग टू फोकस ऑन ग्लोबल वैल्यू चेन, नंबर वन। नंबर टू, वी हैव ओपन्ड अप मेनी सेक्टर्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, whether it is space, drones, defense, the insurance sector, for example. And the Prime Minister also has spoken about nuclear energy generation to be open to the private sector and foreigners, etc. So we are continuing to make several sectors of the Indian economy open to foreign investment. And third, we are pursuing deregulation, which is always going to make investment easier, whether it is domestic or foreign in origin.
5: The FDI policy reforms reflect India's efforts to create a more investor-friendly environment, simplified investment procedures and to strengthen its position as a preferred global investment destination. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
3: Union Minister Gajendra Singh Shekhawat today inaugurated the BRICS Theatre Festival 2026 in New Delhi. The festival will be held till Wednesday. Speaking on the occasion, Mr. Shekhawat said, at a time when the world is witnessing geopolitical tensions, conflicts and growing uncertainties, culture can play a vital role in fostering dialogue, building trust and promoting global harmony.
8: In a world

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। भारत ने बरतानिया के साथ इक्तिसादी इश्तराक को मुस्तहकम करने के अज़्म का एआदा किया है। 2030 तक बाहमी तिजारत को दोगुना करने का हदफ रखा है। मरकज ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पर जोर दिया है कि वो तिब्बी इदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात और सहूलतों के इवज शरहों को नुमाया तौर पर जाहिर करने को यकीनी बनाएं। हुकूमत महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ना किसानों की शिकायत के इजाले की खातिर एक आला सतही कमेटी कायम करेगी। नई दिल्ली में जंतर मंतर अब एहतजाज का मकाम नहीं है। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज और मुजाहिरों के लिए 3 नए मकामात नामजद किए हैं। अमरीकी इकतसादी माहरीन रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को इकतसादियात के शोबे में 2026 का नोबेल इनाम दिया गया है। और भारतीय महकमा मौसमियात ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने साल 2030 तक भारत और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तिजारत के हजम को दोगुना करने की अपील की है। आज नई दिल्ली में भारत बरतानिया मुश्तरका माशी और तिजारती कमेटी JETCO के 16वें इजलास के तहत मुनक्कदा मुकम्मल JETCO कारोबारी इजलास से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने यह बात कही। उन्होंने पायदार मसरूफियात, मजबूत इदाराजाती मैकेनिज्म और

0: स्कट पो कायम जक्षा स्कट पो आगे बढ़ाई चोचा सिफिया अगर यहां मोले इन्ना तो देन उसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे बाप दादा ने इस जबान को ये किया राइश किया। अब उस राइश किया तो उसके हर एक चीज के लिए एक मखसूस वर्ड है उसके
1: बख्शिश।
0: उस वर्ड को जब तक हम अपने जबान में वो वर्ड नहीं बोलेंगे तो वो पूरी तरह से आपके जहन में नहीं आएगा। अगर आप किसी और जबान को नहीं समझते हैं पूरी को ही समझते हैं फॉर एग्जाम्पल तो उसमें वही वर्ड बोलने से ही तो जो सुनने वाला है उसके जहन में वो पिक्चर आएगा। तो देर तोकलेन में वास्पेगा हमें उन चीजों को सबसे पहले प्रिजर्व करना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने इस जबान को दिया है, इसकी वोकैबुलरी दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट यह है जबान को कंटिन्यू करने के लिए, जबान को जारी रखने के लिए कि इसको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करें और खुसूसन घर में इस्तेमाल करें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आजकल के जमाने में हमारे जो नौजवान आने वाली नस्लें जो है जो मुख्तलिफ जबाने सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, बाकी क्या क्या सीखते हैं, तो उसके बीच में हमारी अपनी मादरी जबान जो है उसकी वक़्त कम हो जाती है। वो ये सोचते भी हैं कि यार ये छोटी सी जबान है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब तक हम अपनी फाउंडेशन अपनी जबान पे नहीं रखेंगे उसके ऊपर आप कितनी भी मंजिल बनाओ अंग्रेजी में बाकी चीज में, लेकिन आपका बेस जो है पाउंड जो है हमारी अपनी जबान पे होनी चाहिए।
1: फसकत
0: जब पूरी तरह से आप समझेंगे तो आप इस पूरे माहौल को अच्छी तरह से समझेंगे। बल्कि दूसरे जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं कल्चर के बाकी चीज के वो सब समझ आएंगे। अब वो नहीं है हम अपनी जबान को छोड़ के किसी और जबान को सीख के सिर्फ, तो फिर आप ऐसा है कि आपका कोई बेस नहीं है। लिहाजा आता है कसम आने वाली नस्ल जो बच्चे जो आजकल मैं देख रहा हूं उनमें हमारी अपनी जबान जो है वो उसको और रिवाज करने की कमी है। नॉट ओनली इन हियर, यहां नहीं है, सिर्फ कश्मीर में भी मैंने देखा कि कश्मीरी जबान बोलते कम है। आप वो एक तो हाथ तक समझते हैं कभी कभी, लेकिन वो नहीं समझना चाहिए। हमारे दस्तरखान जब घर में आप खाना खाते हैं, खुसूसन मैं बोलूंगा पेरेंट्स को, जब आप खाना खाते हैं तो सब मिलके पूरी फैमिली मिलके दस्तरखान बिछा के जब खाना खाएगा उस पर हमारी जबान को यूज करो।
1: कसम
0: दुआ टकी जरबा, दुआ पापा जरबा, दुआ थुप्पा जरबा, दुआ स्क्रू जरबा, दुआ ब्रो जरबा, दुआ नज जरबा, इन मैं ले, तब जाके बच्चे जो है डेली आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको पिकअप करेगा और पिकअप करने के बाद उनको जबान की एक वोकेबुलरी ऑन
1: अल्फाशिक्स
0: सुन के ना इतुल ना फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता वो उसका जबान बढ़ जाता है।
1: कारगिल अंग्रेजी उर्दू कम्फर्टेबल खरखोर पेंगुन
0: एक दफा लूज ना دینے دے اس جچہ
1: دیکھ نہیں ہم کوئی سنگ پہنوں نے دی دو بھی شاچا بھی میں تھا جو درے متو ماتا تھو دو ننگ پہنوں کے سچ کول نہ پھرو کرس کول چے نہ کا تو درے اتا پھرو نی ٹینشن یوں درس بو درے سبق من مسل کھنے دے اپی لان دس پراو ایتو لسن دو کول نہ میں ٹینشن چے
0: ٹینشن چے
1: نہ کا تے اپی انگلش دین سبق میں مسل چنا اتا ننگ پہنوں کول پھرو کا تو گا سیک گا تم چنگ نہ تس کول نہ کا تو